0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। मगोबाकवा जलाशय के गिरते जल स्तर से सबसे ज्यादा फ्लैन विलियम्स वाले इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो उसके नेटवर्क से जुड़े हैं। कुछ इलाकों में कई दिनों से पानी सप्लाई बाधित हुआ है, जिससे सेंट पॉल, अलेभी, योंक्लेफ, फिनिक्स आदि कई इलाकों में कल रात लोगों ने सड़कों पर उतर कर आक्रोश जताया। रास्तों पर पहिए जलाए गए। स्थल पर मौजूद हुए सांसद कुशल लोबी ने लोगों से शांति बनाने और CWA से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि पानी को लेकर देश में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन जनता को राहत पहुंचाए जाने के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। उन्होंने CWA से पानी के टैंकर भेजने के बजाय दिन में कुछ घंटों के लिए पानी सप्लाई करने की मांग की। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार अधिकारी सुनील गोपाल ने आश्वासन दिया कि स्थिति संभालने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उनके अनुसार एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी जो सीधे रूप से बाशिंदों के संपर्क में रहेंगे ताकि उनकी समस्याओं पर सही तरीके से काम किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि CWA के स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसी अस्थिरता फिर पैदा न हो। कांग्रेस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किया गया। इस नई इकाई का मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को दी जाने वाली देखभाल बेहतर करना। ये यूनिट मरीजों को इमरजेंसी की स्थितियों में ज़्यादा बेहतर और कुशल सेवा देने के उद्देश्य से कायम की गई है, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का तेजी से इलाज हो सकेगा। उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की अहमियत पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, रूसी ताकतों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उत्तरी यूक्रेन में एक आवासीय इलाके में 19 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 बच्चे शामिल बताए जाते हैं। 30 से ज्यादा फ्लैट्स नष्ट हो गए हैं। यह हमला तब हुआ जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह के दौरान पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्के बादल घिरे रह सकते हैं, हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि देर दोपहर बाद पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट प्लाटू वाले कुछ इलाकों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पूर्वी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। सुबह के दौरान दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:45 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:09 पर सूर्यास्त होगा।
2: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 You are listening to RM3 Radio.

मोहतरम सामीन, क़यामत के दिन उम्र के बारे में सवाल। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे उसकी उम्र के बारे में सवाल न कर लिया जाए कि उसने उसे किन कामों में गुजारा, उसके इल्म के बारे में कि उसने उसके साथ क्या अमल किया, उसके माल के बारे में कि कहां से कमाया और कहां खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि उसे किन कामों में खपाया। इस हदीस से मालूम होता है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की अमानत है। इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि वक्त सिर्फ तफरी, खेल, सोशल मीडिया या दुनियावी मशागिल के लिए है। क़यामत के दिन इंसान से पूछा जाएगा कि जो उम्र उसे अता की गई थी उसने उसे कहाँ खर्च किया। इसलिए हमें अपने दिन और रात का जायज़ा लेना चाहिए। अगर हमारा वक्त नमाज, कुरान, इल्म, हलाल रोज़गार, ख़ानदान की खिदमत और नेकी में गुजरता है तो ये हमारे लिए सरमाया बन जाएगा, लेकिन अगर वक्त गुनाह और गफलत में गुजर गया तो यही वक्त हमारे खिलाफ गवाही दे सकता है। अकलमंद इंसान मौजूदा वक्त को नेकी के लिए इस्तेमाल करता है।

सामीन मुख्तरम, वक्त ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। दौलत ज़ाया हो जाए तो दोबारा कमाई जा सकती है, सेहत ख़राब हो जाए तो बाज़ औक़ात इलाज से वापसी आ सकती है, लेकिन जो एक लम्हा गुज़र गया वो दुनिया की तमाम दौलत खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपने वक्त को नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र, इल्म, वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक और नेक आमाल में इस्तेमाल करें। आज का नेक अमल कल की कामयाबी बन सकता है, लेकिन आज का ज़ाया किया हुआ वक्त कल सिर्फ पछतावा बन सकता है। सामीन मुख्तरम, सबाल खैर ख़त्म हुआ चाहता है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ हम इजाज़त तलब करते हैं। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: Montgomery Archisundaram.
1: Your music, your request.

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

भक्ति में शक्ति। सभी श्रोतागण को अनीता का प्रेम सहित नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति कार्यक्रम का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रोतागण, कहा गया है कि उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है और उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, इसलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। तो आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, एक श्लोक इस प्रकार है कि काल चक्रम प्रवर्तेत काल चक्रे जगत भ्रमेत, काल चक्रम युगावर्त काल चक्रम रथस्य च। भावार्थ यह है कि समय निरंतर गतिशील है और उसके साथ संसार में परिवर्तन होता रहता है। युग, परिस्थितियां और जीवन की अवस्थाएं

प्रियजन, चाणक्य नीति में कहा गया है कि मनुष्य को कोई कार्य बड़ा हो या छोटा, उसे पूरे उत्साह, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ आरंभ करना चाहिए। यह गुण हमें सिंह से सीखना चाहिए, जो अपने कार्य को पूरी शक्ति और एकाग्रता से करता है। अर्थात कार्य छोटा हो या बड़ा, सफलता के लिए उसे पूरे उत्साह, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए।

भक्तजन, आगम का अर्थ है ज्ञान का मार्ग, धर्म का संग्रह तथा शास्त्रीय ग्रंथ, जो ज्ञान और परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होकर आगे आती है, उसे भी आगम कहा जाता है। आगम का एक अर्थ अभ्यागम अर्थात आगमन या प्राप्ति भी है। यह मनुष्य को ज्ञान, धर्म और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओं, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जो जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा।

कि वे स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ। विशेषता यह थी कि जैसे जैसे दान करने के लिए अपने हाथ उठाते थे, अपनी आंखें झुका लेते थे, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये कैसा दान है।

0: तभी तो खरीदा जाता है, तभी तो खरीदा जाता है।
1: प्रियजन, चाणक्य नीति में कहा गया है कि कोकिलानाम स्वरो रूपम नारी रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम करुपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। भावार्थ यह है कि कोयल का रूप उनका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है।

श्रोताओं, मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके शब्दों से नहीं, परिस्थितियों में किए गए उसके कर्मों से होता है। तो इन्हीं विचारों के साथ श्रोताओं, हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

的歌曲，有陈奕迅《忘记歌词》，我的快乐时代，我什么都没有，幸福摩天轮。希望接下来这半个钟头可以让你轻松自在。

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार महोबा कुआ जलाशय के गिरते जलस्तर से सबसे ज्यादा प्रिंस विलियम्स वाले इलाके प्रभावित हो रहे हैं जो उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं कुछ इलाकों में कई दिनों से पानी सप्लाई बाधित है जिससे सैंपल अली बियों क्लियफों फिनिक्स आदि कई इलाकों में कल रात लोगों ने सड़कों पर उतर कर आक्रोश जताया रास्तों पर पहिए जलाए गए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि स्थिति संभालने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे और अधिकारियों के अनुसार एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी जो सीधे रूप से बाशिंदों के संपर्क में रहेंगे ताकि उनकी समस्याओं पर सही तरीके से काम किया जा सके। मॉरिशस में पानी की कमी चिंता का विषय बनी हुई है फिर भी किसानों को पाबंदियों और जल आपूर्ति की दिक्कतों के बावजूद अपने खेतों में सिंचाई जारी रखनी पड़ रही है। उनकी मदद के लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सौर पैनल्स बिठाने के लिए खेती से जुड़े सहकारिता संगठनों को 2 मिलियन रुपये तक की नई आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले कोऑपरेटिव संगठनों के पास आवेदन जमा करने के लिए अगले 11 नवंबर तक का समय उनके पास है। शिक्षा के क्षेत्र में मॉरिशस और फ्रांस के बीच एक नई साझेदारी कायम हुई है। मकसद है स्कूलों में फ्रेंच भाषा में पठन पाठन को बढ़ावा देना। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पाकू प्लूस नामक इस परियोजना के माध्यम से छात्र फ्रेंच भाषा के इस्तेमाल के से विज्ञान को एक नए तरीके से समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारतीय सिनेमा शोक में है। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन आज सुबह हो गया है। जानकारियों के मुताबिक उन्हें गोवा स्थित उनके आवास पर बेहोश पाया गया था। अस्पताल पहुंचाए जाने पर वहां इस बात की पुष्टि हुई कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उधर रूसी ताकतों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उत्तरी यूक्रेन में एक आवासीय इलाके में 19 लोगों की मौत हुई है। इनमें 5 बच्चे शामिल बताए जाते हैं। यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। इसी के साथ संक्षिप्त

0: समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

जी हाँ दोस्तों, वो टाइम जहाँ पर आप करते हैं इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार, वक्त हो चला है इस प्यारे से शो का जिसका नाम है सुहाना सफ़र। एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार आदाब हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। RM3 रेडियो मनोरंजन, मैं हूँ फरी, आपके साथ लेकर आई हूँ सुहाना सफ़र, ये प्रोग्राम जहाँ पर सुहाने सुहाने गीत आपके लिए हम चला रहे हैं। आपकी इस दोपहर को खास और स्पेशल बनाने हम आते हैं और कोशिश यही रहती है कि आपके साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाए, आपके मैसेजेस हम तक पहुंच जाए, आपकी पसंद के कुछ गीत हम चला पाएं और जैसे हम कहते हैं हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि इन हैप्पी सॉन्ग्स के साथ हम हमारे लिसनर्स का मूड भी हैप्पी रख सकें। तो दोपहर का वक्त है दोस्तों, वक्त हो चला है आपके इस प्रोग्राम सुहाना सफ़र का, जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070 पर 4028070, या फिर आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5250620052506200 पर। तो चलिए साथ रहेगा आपका और मेरा आज सुबह के 3 बजे तक 3 घंटों का ये खूबसूरत सफ़र हम आपके लिए सजाए रखे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। तो रहेगा आपके मैसेज, आपके फोन कॉल्स का इंतजार, तब तक के लिए हो जाइए खूबसूरत गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

जी हाँ दोस्तों, एक खूबसूरत सा गाना फिल्म शरारत से लिया हुआ 1972 की ये फिल्म, और ये गाना था हमारे सभी सुनने वालों के नाम। इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं अनीता जी बेलरोज से, और सभी उचित परिवार रामफल परिवार के नाम कर रही हैं गाना डेडिकेट अपनी तीन बेटियों के लिए, कल्याणी, पूनम और मालिनी। और साथ ही आज मालिनी जी अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो बहुत सारी गुड विशेज, बहुत सारी बधाइयाँ। आपका खास दिन है, और अनीता जी आपकी मामा की ओर से ये स्पेशल सा डेडिकेशन आपके नाम।

तो ये था एक खूबसूरत सा गीत फिल्म तीसरी मंजिल से लिया हुआ ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम अनीता जी उम्मीद करते हैं इस गीत को आपने पसंद किया चलिए यहाँ पर मैसेजेस के जरिए आपके डेडिकेशंस भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रूप तेरा मस्ताना फिल्म का गीत आप सुनना चाहती हैं नाम आपने नहीं बताया लेकिन आई गेस इट्स यू माधुरी जी तो चलिए जो अगला गाना है इसे हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं आपकी ये दोपहर हो रही है खास हमारे इन स्पेशल गीतों के साथ जिसमें शामिल हो रही है आपकी पसंद भी

तो अभी के लिए रेडियो मनोरंजन जहां पर हम लेकर आए हैं ये प्रोग्राम सुहाना सफर 12 से लेकर 3 बजे तक। जी हाँ, आज 3 बजे तक हम होंगे आपके म्यूजिकल हम सफर। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके फोन कॉल्स कर रहे हैं हम वेलकम राइट हियर ऑन रेडियो मनोरंजन। साथ देने के लिए शुक्रिया। एंड स्पेशली माधुरी जी, ये गाना आपके नाम। एंजॉय दिस वन।

0: सकते हैं अगर आपकी पसंद आप शामिल करना चाहते हैं आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 5250620025206200 या फिर आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं 4028070 यानी कि 4028070 पर मैं परी कर रही हूँ आपका इंतज़ार लेकर आए हैं प्रोग्राम सुहाना सफ़र आपके लिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: और चलिए कविता जी साथ दे रही हैं आप ये खूबसूरत सा गीत आपके नाम आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजें सीता और गीता फिल्म से लिया हुआ ये खूबसूरत सा गीत साथ यहाँ पर ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हेमा मालिनी संजीव कुमार एंजॉय दिस वन

हुआ है और हम तक पहुंचा है, क्योंकि गाने तो थे लाजवाब, आवाजें ऐसी जिन्हें हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए अभी के लिए लता मंगेशकर, मुकेश साहब की आवाज, और ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारी प्यारी सी मनीता जी के नाम। फ्रांस से हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं, गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ प्यारी माँ सुमंती और प्यारे पापा की याद में, जो बिल्कुल विश्वजीत की तरह दिखते थे, और पूरे परिवार को याद कर रही हैं जो यहाँ मॉरिशस में है, सेंट जूलिया विलेज से। सभी परिवार के लिए हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं, और अच्छा लगता है मनीता जी जहाँ पर आप अपनी दिल की बातें हमसे शेयर करते हैं, और यहाँ पर हम जो आपके लिए मैक्स कर सकते हैं वो ये कि आपकी पसंदीदा गीत हम आप तक पहुँचा सके। तो अभी के लिए साथ देने के लिए शुक्रिया हमारे सभी लिसनर्स जो भी हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, जो भी हमें फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, और जो शायद कहीं पर थोड़े से बिजी हैं लेकिन गानों को हमारे साथ सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। आप सभी के नाम ये खूबसूरत सा गीत साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ परी आपके साथ, सुपहर के 3 बजे तक सजाए रखा है हमने आपके लिए ये सफ़र जिसका नाम है सुहाना सफ़र।

जी हाँ दोस्तों, वो तो दौर ही अलग था और मैजिक तो यही है कि इतने साल बीत गए, इतने डिकेड्स बीत गए, लेकिन इतने डिकेड्स के बाद भी ये गाने इतने लाजवाब, इतने ब्यूटीफुल, सुनकर लगता है कि बस अभी अभी ये फ्रेशली गाना तैयार हुआ।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: RM3 Radio.
2: वैसे तो हमारे रेडियो का नाम ही रेडियो मनोरंजन है, जहां पर आपका मनोरंजन हम करते रहते हैं. और आपके इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे फोन कॉल्स, दिल को अच्छा लगता है कि आप इस वक्त साथ निभा रही हैं. तो चलिए, नंदा जी पाए से हमारा साथ दे रही हैं. दोस्ती फिल्म का ये गाना स्पेशली आपके नाम. साथ ही आपके तीन बेटे हैं, अविनाश, अशिल, अभिषेक, आपकी बेटी अश्विना, और साथ में है गुलू, अरवी, आपके पति दीपक. नंदा जी, आपने भी हमारा साथ दिया है पाए से. सो आपके पूरे परिवार के नाम ये खूबसूरत सा गीत हम यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस हमारे लिए काफ़ी स्पेशल और काफ़ी दिल के करीब. तो ऐसे ही कनेक्शन बनाए रखिए हमारे साथ ऑन रेडियो मनोरंजन.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, एक फूल दो माली उसी फिल्म से लिया हुआ ये गाना सीता जी पोंदेलास्का से हमारा साथ दे रही हैं। ये गाना आप डेडिकेट करना चाहती है वीर रमोनिक के नाम, उनके पापा जय, उनकी मामा शनी, उनकी बहन योगेश्वरी, साथ में है केविन, सभी मोनिक परिवार, सभी राम भोजन परिवार। ये खूबसूरत सा गीत डेडिकेट करना चाहते हैं वीर के नाम और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी स्वीट स्वीट हमारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए खूबसूरत सा गीत आपके नाम भी, सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। मन्ना डे

0: RM3 Radio.
1: और यहाँ पर जीवंती जी बेलविदे से हमारा साथ दे रही हैं और काफ़ी सारे आपके परिवार में जन्मदिन मना रहे हैं. शैलेश लक्ष्मण उनका जन्मदिन, तो जन्मदिन की बधाइयाँ सभी लक्ष्मण परिवार की ओर से. अश्विना लक्ष्मण को भी बहुत सारी गुड विशेज. और रेनू सोहाती जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, पुत्र दो हैमलेट से हमारा साथ दे रही हैं. सभी सोहाती परिवार लेकर आए हैं आपके लिए गुड विशेज और स्पेशल विशेज जीवंती जी की ओर से. बेलविदे से आपके सभी परिवार के नाम डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना. शब्बीर कुमार की आवाज़ प्यार किया है प्यार करेंगे फिल्म से लिया हुआ ये गीत. आपके नाम आपकी पसंद.

का गाना तो चलिए दोस्तों ये है आपका अपना सुहाना सफर परी का साथ है आज सपहर के 3 बजे तक जहां पर आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5250-6200 मैसेजेस डेडिकेशंस या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070 पर।

0: 104.3 रेडियो मनोरंजन। और चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको इन द एरा ऑफ 1959, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उजाला। बाबू अनाटवा जी, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद। जी हाँ, इसी खूबसूरत गीत को हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। फिल्म में नजर आए थे शम्मी कपूर, उनका साथ देते हुए राजकुमार और द वेरी गॉर्जियस माला सिन्हा, और उन्हीं दो एक्टर्स यानी कि शम्मी कपूर और राजकुमार पर पिक्चराइज ये गाना आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यार से ये गाना हम आपके नाम चला रहे हैं। साथ ही आपकी ओर से बेटा बेटी भावना, आपकी पत्नी उषा, आपकी बहू पूजा, दामाद जैसन जिन्होंने कल अपना जन्मदिन मनाया, तो उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं एंड स्पेशल विशेष सभी अनाटवा परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। बाबूजी, आपकी तरफ से ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके सभी परिवार के नाम, सभी अपनों के नाम, जितने भी आपके भाई, आपके लव्ड वंस हैं, सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत साथ निभाने के लिए शुक्रिया। 12:54 और थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर। जी हाँ, लौट कर आएंगे, सजाएंगे कुछ और प्यारे गीतों के साथ आपका ये खूबसूरत कारवां, सुहाना सफर प्रोग्राम। मैं हूँ परी आपके साथ सपहर के 3 बजे तक आज आपका और हमारा ये कारवां यहाँ पर जारी रहेगा। साथ दे रहे हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी के लिए उजाला फिल्म का ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम, स्पेशली गुजार्ड फॉर बाबू अनाटवा और सभी आपके परिवार, सभी अपनों के नाम।
1: यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक 1 PM थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार साथ दीजिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन सुन रहे हैं प्रोग्राम सुहाना सफर

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। लाकावियन फिनिक्स के लोग कल रात सड़कों पर उतर आए। वजह ये थी कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। वे कम से कम 1 से 2 घंटे पानी देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका घरेलू वाटर टैंक भर सके। मऊवाकवा जलाशय के सूखने और एक तकनीकी खराबी के कारण पानी की कमी हो रही है। रात के 9 बजे के करीब स्थिति सामान्य पर लौट आई। एक ओर जहां देश में पानी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, वहीं खेतिहरों को जल आपूर्ति में पाबंदियों और कठिनाइयों के बावजूद खेतों की सिंचाई जारी रखना चाहिए। सिंचाई की लागत कम करने के लिए सरकार कृषि सहकारिता संगठनों को एक नई मदद प्रस्तावित कर रही है। सोलर पैनल्स बिठाने के लिए 2 मिलियन रुपये तक की सहायता दी जाएगी। जो संगठन इसमें रुचि रखते हैं वे 11 नवंबर तक इसकी मांग कर सकते हैं। जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नाना पाटेकर जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व और अनोखा प्रभाव बहुत कम अभिनेताओं को में देखने को मिलता है। नाना पाटेकर का हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और पेंटागन ने यूएस सेंट्रल कमांड को ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई को फिर से शुरू करने की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक नए हमले शुरू करने के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। रिपोर्ट के अनुसार इन तैयारियों से ईरान की परमाणु सुविधाओं, ऊर्जा बुनियादी ढांचे और अन्य तकनीकी और अन्य रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना शामिल है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

जी हाँ दोस्तों, दिल तो ढूंढता रहता है फुर्सत की रात दिन, लेकिन मंडे टू फ्राइडे ये फुर्सत के पल कहाँ मिलते हैं। इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ता है कब छुट्टी के दिन आए, या फिर अगर आप घर पर हैं, इफ़ यू आर टायर्ड एंड यू एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, सो आई गेस अब वो आपका दौर है जहाँ पर आपको ये फुर्सत के पल एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि आपने ये पल खुद अपने लिए कमाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 1:10 मैं हूँ परी आपके साथ। थर्सडे आफ्टरनून 8th of October यानी कि 8 अक्टूबर आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। परी का साथ है सुपहर के 3 बजे तक और सुहाना सफर ये प्रोग्राम जहाँ पर आपके खूबसूरत गीत शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर कारो कासिया से बिंदु दुखित राम हमारा साथ दे रही हैं और अगला गाना आप डेडिकेट करना चाहती हैं पति रमेश, सभी बच्चों के नाम और साथ ही साथ जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और सभी दुखित राम परिवार के लिए। तो एक और खूबसूरत गाना नादान फिल्म से लिया हुआ ये गीत मुकेश साहब की आवाज़ डेडिकेट कर रहे हैं फॉर यू बिंदु जी और आपकी ओर से सभी लिसनर्स और सभी दुखित राम परिवार के नाम।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: बिल्कुल जी, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते भी अपनी जगह, लेकिन जिस जगह आप आए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जगह है, जहां पर आपके लिए ऐसे खूबसूरत गीत हम चला रहे हैं जो शायद आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। शायद इन गीतों को सुनकर आपको वो सुहाने दिन याद आते हैं, या फिर शायद इन गीतों के साथ किसी खास की याद जुड़ी है। तो जो भी आपके दिल के एहसास है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। 5250-6200-5250-6200 आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ दोस्त, तो चलिए कविता जी, इस गीत को आप सुनना चाहती हैं, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर की आवाज़ें, एक और प्यारा सा गाना आपके नाम, और साथ ही यहाँ पर जितने भी आपके लव्ड वंस हैं, फ्रॉम द फिल्म अपनापन, ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर ऑल द लिसनर्स। साथ देने के लिए शुक्रिया। ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, मैं हूँ परी आपके साथ सुपहर के 3 बजे तक।

0: RM3 Radio.
1: तो यहाँ पर ये गाना था सतीश जी आपके नाम। उम्मीद करते हैं इस गीत को आपने पसंद किया, आपकी पसंद जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं इन खूबसूरत गीतों के साथ। शमीमा जी हमारा साथ दे रही हैं पॉइंट साबले से, और ये जो गाना है खूबसूरत सा गीत, इसे आप डेडिकेट कर रही हैं सभी सुनने वालों के नाम। आमने सामने फिल्म से लिया हुआ ये गाना, रफ़ी साहब लता मंगेशकर की आवाज़ें, हमारी प्यारी सी शमीमा जी आपके नाम और आपकी ओर से हमारे सभी श्रोताओं के।

जैसे कहते हैं कि वक्त वक्त की बात है, कभी कितने दूर कभी कितने पास। और अभी इस वक्त जैसे यहाँ पर हम कहते हैं रेडियो पर, आप तो हमसे दूर है लेकिन मैसेजेस, डेडिकेशंस, फोन कॉल्स के जरिए आप भी हमारे करीब आ जाते हैं। इन खूबसूरत गीतों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रोग्राम सुहाना सफ़र, मैं हूँ परी आपके साथ सुपहर के 3 बजे तक। चलिए यहाँ पर राधा जी मोचीदा से हमारा साथ दे रही हैं और अपनी सखी देवरानी और सखी शोभा के लिए गाना डेडिकेट कर रही हैं, जिस गाने को आप सुनना चाहती हैं। फिल्म असली नकली नहीं बल्कि ये गाना है लव मैरिज फिल्म का, और कहती है कि आपकी जो फ्रेंड है, आपकी जो सखी है, देव साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो चलिए ये जो खूबसूरत सा गीत है इसे डेडिकेट करेंगे फॉर ऑल द फैंस ऑफ देव आनंद साहब। जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, गानों को गुनगुनाते रहिए। आपकी इस दोपहर को खास और स्पेशल बना रहे हैं राइट हियर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200 या फिर आपके फोन कॉल्स 4028070 पर।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: RM3 Radio. RM3 Radio.
2: तो खूबसूरत गीतों में एक और खूबसूरत सा तराना शामिल होता हुआ मुकेश साहब सुमन कल्याणपुर की आवाजें बोनमय से शीला जी हमारा साथ दे रही हैं सभी माकुना परिवार के नाम डेडिकेट कर रही हैं आप गाना और खूबसूरत सा गीत कह सकते हैं एवरग्रीन सॉन्ग 1968 साथ ही फिल्म का ये गाना आपके

और यहाँ पर रफी साहब की आवाज, एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए शामिल हो रहा है, स्पेशली साजिद जी आपके नाम साथ दे रही हैं आप हमारा। गीतों को सुनते हुए आप भी अपना वक्त बिता रहे हैं और 12 से लेकर 2 बजे का ये जो समय होता है खास, क्योंकि इसे डेडिकेट करते हैं हम ऐसे गीतों के नाम जो शायद आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, कुछ गीत ऐसे जिनके साथ आपकी खूबसूरत सी यादें जुड़ी हुई हैं। और अभी के लिए तो ये गाना आपके दिल के भी बहुत ज़्यादा करीब, साजिद जी इस गाने को हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं, आपकी ओर से सभी सुनने वालों के नाम। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक फिल्म सूरज, रफ़ी साहब की आवाज़ में। एंजॉय दिस वन।

0: گستاخی ماں گستاخی ماں.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: और चलिए इट्स 155 और अक्टूबर का ये जो महीना है ये खास है सभी दिन और आमदनी परिवार के नाम, क्योंकि हमारी प्यारी सी आरओ ही अपना जन्मदिन मना रही है इसी महीने में. तो उनके लिए स्पेशल विशेज ये है बहुत ही प्यारी नानी कमला जी की ओर से, साथ ही साथ उनकी माँ दिव्या और उनकी नानियाँ है टीना है गंगा है साथ में है केशा निष्ठी. सभी दिन और आमदनी परिवार लेकर आए हैं स्पेशल विशेज फॉर लिटिल स्वीट डियरेस्ट आरोही. उनके लिए प्यार और शुभकामनाएं सुमन कल्याणपुर की आवाज में. ये खूबसूरत सा गाना और इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. साथ रहेगा आपका और मेरा यानी कि परे का 2 बजे के बाद. समाचारों के बाद जारी रखेंगे आपका ये प्रोग्राम सुहाना सफर. सपहर के 3 बजे तक खूबसूरत गीत होंगे आपके नाम. अभी के लिए दिस वन गोज आउट फॉर स्वीट आरोही और आपके लिए बहुत सारा प्यार आपकी प्यारी सी नानी कमला जी की ओर से.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। हमारे जलाशयों में खासकर मऊफाकुआ में पानी के स्तर की चिंताजनक स्थिति से कम होने के कारण CWA पानी की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही हैं। आज सुबह ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवाडेन ने लामारी ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और समाधान ढूंढे जा सके। 156 नर्सिंग अफसरों को आज MGI में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि बहुत जल्द हमारे अस्पतालों में 200 नर्सों की भर्ती की जाएगी। 2027 में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपने नियमों को काफ़ी सख्त कर दिया है। कैनबेरा नए विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने के साथ साथ वीज़ा हासिल करने की शर्तों को भी कड़ा करना चाहता है। इन बदलावों का असर उन मॉरिशन छात्रों पर भी पड़ सकता है जो आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। मॉरिशस के लिए एक विकल्प ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा और प्रशिक्षण को छात्रों के करीब लाया जाए बजाय इसके कि सभी छात्र पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएं। फिलहाल ये सिर्फ एक संभावना है जिसे अभी ठोस रूप दिया जाना बाकी है। विदेशी खबरों में सिंगापुर की हवा कल दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रदूषित रही। इंडोनेशिया में लगी जंगलों की आग से उठे धुएं ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को धुंध की चादर में ढक दिया है। इसके चलते मलेशिया में कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। ये धुंध इंडोनेशिया में लगी बेकाबू आग के कारण पैदा हुई। वहां खेती के लिए जमीन साफ करने के उद्देश्य से आग लगाने की प्रथा है और तेज हो रहे एलनीनो के प्रभाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। एलनीनो के कारण मौसम अधिक गर्म और शुष्क हो जाता है और जमीन में नमी कम हो जाती है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on MBC Play and MBC.mu.
3: You're listening to RM3 Radio.

यार की खबर मिल गई राम बलराम फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये गाना था आप सभी के लिए और इसी गीत के साथ आपका हम स्वागत करते हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन एक बार फिर वार्म वेलकम इस आवो में जहां पर लेकर आए हैं आपके लिए सुहाना सफर मैं हूं परी आपके साथ सुपहर के 3 बजे तक तो चलिए यहाँ पर तालिब जी हमारा साथ दे रहे हैं आप और डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर पत्नी शहजादे उनके लिए ये खूबसूरत सा गीत और मुकेश साहब की आवाज़ में सफ़र फिल्म का ये गाना कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करूँगा सो दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक और ये जो प्यारे प्यारे गीत है जो गीतों के ज़रिए आपके दिल की बातों को दिल के जज्बातों को बयां कर जाते हैं तो बस इन्हीं गीतों को हम पहुँचा रहे हैं आपके अपनों तक आपका भी साथ बना हुआ है और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 इसी नंबर पर हो रहा है आपका इंतज़ार अभी के लिए ये गाना तालिब जी आपकी ओर से आपकी पत्नी शहजादी के नाम

0: RM3 Radio.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको सुन लेंगे।
3: देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है इस शहर में कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ नेक लड़का चाहिए। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी दो शादी किया मेरा बाप।
4: मराठी फिल्म अभिनेता विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें हम नाना पाटेकर के नाम से अधिक जानते हैं, 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। नाना पाटेकर ने अपनी अदाकारी से सभी के दिलों को छुआ है और आज हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी फिल्मों के माध्यम से वे सदा हमारे दिल में बसे रहेंगे। अंगार, तिरंगात, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, खामोशी जैसी फिल्मों के मुख्य अभिनेता, आपको हमारा अंतिम नमन।
0: RM3 Radio.

और जी हां यहां पर आपकी पसंद के गीत भी शामिल हो रहे हैं सुबी हमारा साथ दे रहे हैं आप और तो ये गाना आपके नाम आपकी ओर से डेडिकेट करना चाहते हैं गाना आप मामा निर्मला के लिए साथ ही साथ पापा विकास और सभी परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं नितिन मुकेश की आवाज मुकेश साहब के

लेकर सुपहर के 3 बजे तक खूबसूरत गीतों का कारवां आपके नाम मसाद देने के लिए शुक्रिया मैसेजेस डेडिकेशंस 5250 6200 5250 6200 पर आपका इंतजार

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत गीत हम आपके लिए चला रहे हैं।

एक से बढ़कर एक गाने जो हम आपके लिए चुनकर लाए हैं, कुछ गीत ऐसे जो आप सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रिया जी हमारा साथ दे रही हैं, आप काठरबोन से हमारा साथ दे रही हैं, आप इस वक्त किचन में हैं और गानों को सुन रही हैं, साथ दे रही हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। चलिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपकी ओर से सभी गंगा दिन परिवार के लिए। साथ देने के लिए शुक्रिया। काला पत्थर फिल्म का ये गाना 2:40 परी का साथ है रेडियो मनोरंजन लेकर आए हैं प्रोग्राम सुहाना सफर। एंजॉय दिस वन।

बिल्कुल दोस्तों, यही तो आपका प्रेम नगर है, आपका अपना RN3 रेडियो मनोरंजन। विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक का समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा। जाते जाते यहां पर एक हाजी साथ दे रही हैं पोंबोजे से, डेडिकेट करें हैं गाना अपने सभी दोस्तों के नाम। नौशीन करयानी साथ में हैं, इंदिरा शालिनी अभी इस वक्त काम कर रहे हैं आप। तो चलिए खूबसूरत सा गीत आपके लिए, पुराने गानों का कारवां होता है अभी से लेकर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एवरी थर्सडेज। तब तक के लिए तो बस आपसे लेंगे इजाजत, मुलाकात होगी जल्द ऑन रेडियो मनोरंजन। सुनते रहिए ये खूबसूरत प्रोग्राम्स जो स्पेशली आपके लिए हम लेकर आते हैं। परी को दीजिए इजाजत और साथ जुड़े रहिए, समाचारों के बाद सुन पाएंगे प्रोग्राम आज की चर्चा।

0: सुनते देश विदेश की खबरें आपसे गीता नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतू शाह सभी को हमारा नमस्कार लाकाबियन फिनिक्स के लोग कल रात सड़कों पर उतर आए वजह ये थी कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है वे कम से कम एक से दो घंटे पानी देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका घरेलू वाटर टैंक भर सके अंतरिम प्रधानमंत्री अगया नावा मागी ने जनता से समझबूझ और धैर्य रखने की मांग की है ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने बताया कि ये समस्या मऊफाक्वा जलाशय के सूखने के कारण पैदा हुई है सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जनता को राहत देने के लिए रात दिन काम कर रही है हमारे जलाशयों में खासकर मऊफाक्वा में पानी के स्तर के चिंताजनक स्थिति से कम होने के कारण CWA पानी की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है आज सुबह ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने लामारी ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और समाधान ढूंढे जा सके 156 नर्सिंग अफसरों को आज MGI में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी डिग्रियां प्रदान की गई इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि बहुत जल्द हमारे अस्पतालों में 200 नर्सों की भर्ती की जाएगी जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नाना पाटेकर जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व और अनोखा प्रभाव बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलता है नाना पाटेकर का हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा दुनिया भर के मौसम विशेषज्ञ एलनीनो के बारे में चेतावनी दे रहे हैं और इसके ऐसी स्थिति में पहुंचने का दावा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत महासागर में भारी मात्रा में जमा हुई गर्मी के बाहर निकलने के कारण आने वाले महीनों में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म रहेगा एलनीनो सर्दियों में भी अपनी पूरी ताकत के साथ बना रहेगा और अमेरिका को छोड़कर हर जगह पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार
2: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

आप सभी को नमस्कार। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं, और अगर आप तैयार हैं, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ तकनीकी साथी हैं यज, हमारी जो प्रोडक्शन सहायिका हैं उरुसा, और ये प्रोग्राम रत्नमाला द्वारा निर्मित हो रहा है ये प्रोग्राम और आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इन लोगों की ओर से नमस्कार, और हमारी ओर से भी आप सबका हार्दिक स्वागत हम करते हैं। वैसे किसी वस्तु या सेवा से अगर हम संतुष्ट नहीं, तो इसके लिए शिकायत करना ज़रूरी पड़ता है, शिकायत करना चाहिए। लेकिन कभी कभार मन में ये सवाल उठता है कि शिकायत कहाँ करें, किससे संपर्क करें, हमारी शिकायत पर कार्रवाई कैसे होगी, और अगर समस्या या समाधान न हो तो अगला कदम क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज की चर्चा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए वो टॉपिक जो है आज है कंप्लेंट्स और रिड्रेस मेकानिजम्स, यानी कि शिकायत और उसके निवारण का अधिकार एवं तंत्र। और इन इस विषय पर चर्चा करने के लिए उद्योग एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय से आए हुए दो कंस्यूमर अफेयर्स हैं, श्रीमती सुपोल जी और श्री मीतू जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप दोनों को वो नमस्कार और स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसे कि अभी हम बोल ली, हमने जस्ती कंप्लेंट पर चर्चा कर जा,

0: तो श्रीमती सुपोल जी, हम यही खोजब जाने के पहला कि जो कंप्लेंट जो है ये कौन सी है।
1: कंप्लेंट जैसे बोली ला सर, जब एगो आदमी एगो ग्राहक अपन चीज खरीदारी कर लग बा या एगो सर्विस ले लग बा उससे सैटिस्फे नहीं होल बा तो एगो कंप्लेंट आई करे। जैसे बातें लिवरेजन तौदे होल बा, प्रोड्यूआ कासे टूटल बाते, प्रोड्यूआ नीमन से काम नहीं करता तो अब आदमी ग्राहक तक किन ले लग अब का करी, नहीं सकी सेवी करी तो का करी। तो हमी के मिनिस्ट्री में एगो सेक्शन बाते, सेक्शन कंप्लेंट, जहाँ इस सब चीज इस सब कंप्लेंट देखिला सर। तब का करे के चाहना पहला
0: कंप्लेंट
2: जो है एक इम्पोर्टेंस कौन सा महत्व कौन सी है। कंप्लेंट जैसे बोल जा ग्राहक एगो एगो एगो सर्विस पा भोजू किन्ने बा, तब भोजुआ जैसे किन्ने बा तब एगो प्रॉब्लम होला, जब भोजुआ नहीं सकता सर्विस करे तब एगो कंप्लेंट करेला। तब कंप्लेंट तो हमी लग आवेला तो हमने देखी ला सर कंप्लेंट कैसे है, कौन कौन एक्शन चला लेके देपा हूँ कंप्लेंट वापर। तब एगो आदमी अब कंप्लेंट करेला, कहे कंप्लेंट करेला, कहे प्रॉब्लम कहे कंप्लेंट आवेला, जब एगो आदमी को सर्विस से सैटिस्फाई नहीं जीतू मैं जो चीज भोजू किन लेबा बोले फिट फॉर द पर्पज कौन किन लेबा, जैसे को मास नहीं लावे किन लेबा तो मास नहीं लावे काम नहीं करता था नेक्स्ट का सर्विस करे तो प्रॉब्लम हो जाला, तब था कंप्लेंट करके हाँ कंप्लेंट तक कहे जला बस कि जैसे अगर प्रोग्राम कर रहे सर राइट्स ऑफ कंज्यूमर बोला सर तो एगो राइट्स बोला राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस बोला जला जब एगो पोतेज गला कौन समझते कि जब वो प्रॉब्लम होला तो कैसे कुछ सोल्यूशन से कब आने उके दे कैसे कब से एगो एगो सोल्यूशन बो सर थे दवा जहाँ था कुमिया समा प्लीज ग्राहक के ये सोल्यूशन अब सर जब दोनों जना
0: ये एक सिचुएशन में संतुष्ट हो जाए लोग तो हो हुई जो न एक कंप्लेंट जो ने को शिकायत वो बहुत बहुत जरूरी है,
2: बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंस तो है, इम्पोर्टेंस का है कंप्लेंट वाके जब एगो आदमी एगो ग्राहक एगो एगो एगो प्रोजेक्ट किन लग तब प्रोजेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट का सेविंग करे तब कौन सी करी, जब जब कंप्लेंट नहीं करी तब कोई नहीं जाने टूटल बा जहाँ पर से किनने बा तो अच्छा ओके कंप्लेंट करे के जब वहाँ भी कंप्लेंट तो जाला करे जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होला जहाँ पर एगो भोजुआ किन्ने बा एगो महागाजन में जब गल एगो प्रॉब्लम हो गल तब महागाजन में गल रिपोर्ट कर गल बोले एगो प्रॉब्लम होल बा तब महागाजन ला गल महागाजन कुछ नहीं करता तब भी कहती लैपोथा सब कंप्लेंट वा कि हम नहीं लगावेला जब फोमी सोल्यूशन नहीं मिलेगा ग्राहक और के तब प्रॉब्लम होला तब आवेला हम नहीं लगे कंप्लेंट लैपोथस का है जो एक्शन हुआ नहीं होता जब मिनिस्टर इन्वॉल्व हुई तब काम कंप्यूटर नियमन से सबसे एगो सुधार आने से पागो
0: फॉलोअप चाहेला करे के तो ग्राहक लोग के हक कायम रखे के काहे काहे जरूरी है।
2: जैसे बोले सर हक काहे है जब उन लोग के जैसे बोला पुवा दासा वो भी उन लोग के जो चीज किन ले हुआ सर उन लोग की चाहना को मजा जो स्किल वहाँ से उन लोग के भोजुआ के हिसाब से उन लोग के और सर्विसा मिला था जैसे एगो एगो पैसा पे कर लो एगो भोज के और उन्हें से तो सर्विस करी तो काहे काहे नहीं से तो सर्विस करी उतना पे कर लो सर्विस करके चाहे ना तब उन्हें से किरण से सर्विस करे तब उन लोग के ऐप होता हाँ माजा राइट्स रही की जैसे राइट्स नहीं रही था कैसे सब पूछते करे जो कौन से माथे के दुआ में नहीं रही वो बंधुआ नहीं जानी तब कैसे जानी वो प्रॉब्लम बा तब प्रॉब्लम जानी कौन प्रॉब्लम को दुआवा जानी आगे तब जाने को प्रॉब्लम है ना जो नहीं जाने को मौसम होता कैसे जाने को प्रॉब्लम है उन्हें जाने को चाह करे कि वो प्रॉब्लम हो तो अपना सही कुछ नहीं करी नहीं जाने कहाँ कंप्लेंट करके चाहे ना तब को प्रॉब्लम हो जाला तब ग्राहकों को उसका सेटिस्फैक्शन मिला जो चीज किन लेबा उसका नहीं से कैसा प्रोत्साहित करे कैसे प्रोत्साहित करे ला सर फिर वो ग्राहक आवेला को प्रॉब्लम लेके ना हम जैसे नहीं आपसे कौन कहाँ कहाँ प्रॉब्लम बा फिर वो कौन से माते हमने की आपूसी करी आई बोली तो है प्रॉब्लम बा है प्रॉब्लम तो कुछ ना करे की तो हम यू एडवाइस दिला सर कुछ ना करे
0: कौन सी एक ग्राहक जब कंप्लेंट दर्ज करे ला ओके कौन सी चाहे ला करे की
1: जब एगो ग्राहक कंप्लेंट दर्ज करे ला हमी के मिनिस्ट्री पर पहला जैसे मितु जी बोल पहला अपन जहाँ किने लंग समा गाँव में हौजा चाहे ला जाके देखे के जब हौजा एगो सोल्यूशन है मिलेला तब का करियन सर तब हमी के मिनिस्ट्री बगर तू नहीं हुई सर हमी के मिनिस्ट्री लगे अयन सर कंप्लेंट करे पहला चीज चाहे ला निमन से बोले कि कब किने हो सर फौजुआ कौन प्रॉब्लम बा फौजुआ में और ये जे एगो फौजी में गारंटी बा तब बोले के चाहे ला कितना गारंटी बा जो कि ले हो सर 2024 में दे जो गारंटी तो 2026 दे जो गनबा तब फिनी होता तब महीना पर बोलिए।

0: ऐसा तो दिसंबर में कि लगवा था हबीले गाँव अच्छी बाउकर में तब ये सब चीजवन देखी ला सा कंप्लेन दर्ज करी ला सा तब वो एगो कंप्लेन पर्सनल कंप्लेन आदमी ग्राहक को अपन नाम चाहना दे के नाम नहीं दिए ऐसा तो जब इंस्पेक्टर लोग अपन काम कर दे तो एगो फीडबैक नहीं मिली कंसुमाते हुआ के एगो फीडबैक नहीं मिली ये सब चीज इम्पोर्टेंट है ताजा अपन नाम दे के कहाँ किनले हो सब पहुँच हुआ कब किनले हो सा जे गारंटी बा या गारंटी नहीं बा और एक नेचर कौन क्वालिटी प्रॉब्लम मिला था जैसे एगो मशीन लावे तो बोलिए सा मशीन लावे टूटल बा नहीं सकते हो सा धोई एक्सेट्रा तब ये सब चीज हमें कंप्लेंट दर्ज करी ला
1: तो एक उपभोक्ता के कंप्लेंट जो शिकायत दर्ज करने के सबसे आसान तरीका कौन सी है
0: सबसे आसान तरीका हमें के मिनिस्टर एक हॉटलाइन जैसे बोलिए सा दिल्ली हो सा 185 रोज
1: 185
0: एन विथ सैंक 185 नेवे आ कात्रे 5 दिन लेंदी से शुक्रवार ले ऑफिशे मिनिस्टर में रह लंग सा वो लोग टेलीफोन करिए सा तो टेलीफोन लेके कंप्लेंट सके सा दर्ज करी देजेम बा हमी के मिनिस्टर के निमोरो टेलीफोन जनरल जैसे बोले सा लो रिसेप्शन 460-2500 कब 185 में टेलीफोन करें सा तो ढेर आदमी लोग टेलीफोन करें सा कोनो आदमी लोग कंप्लेंट नहीं मैं एगो रेंसेमेंट ले खातिर टेलीफोन बिजी रहेला तो रिसेप्शन से पासे हुई सा तब रिसेप्शनिस्ट हमी के कंप्लेंट सेक्शन में कोलवा विदा करी और अब तो नवो जमाना टेक्नोलॉजी के जमाना ईमेल हो सक विदा करे हमी के ईमेल बा जो consumerpu@gov.mu.org और ग्राहक के सुविधा के लिए एगो व्हाट्सएप नंबर वो बातें ऊपर अपन कंप्लेंट सक्षम से करें
1: तब हर तरह की सुविधा बातें हम के ग्राहक को अपन अधिकार जताए के उलो के आसानी से अपन कंप्लेंट सकेला करी
0: हाँ और ये कोनो ग्राहक लोग प्रेफर करें सब मिनिस्टर हुए आए के
1: पर्सनली
0: मिनिस्टर आए सा जो हम के मिनिस्टर एबेन में बातें सिकम टावर एबेन जहाँ जो ऑफिशियल लोग बातें जब आए सा ऑफिशियल लोग के रिसीवर करें सा पारे जन जन चित पूछब सा कौन प्रॉब्लम बा का नाम सब तब लोग के कंप्लेंट ले ला सा
1: तो भाई मीतू जी हमने के सब बोले बतावे कि कंप्लेंट के कितना तरह के कंप्लेंट रहे ना
2: हाउ बो आवतली कंप्लेंट है गो यू कंप्लेंट का जनरल है तो हमने के चला हमने लग देखो नेचर ऑफ कंप्लेंट कौन कंप्लेंट है जैसे हमने ला कंप्लेंट आवला प्रोडक्ट के प्रोडक्ट जैसे बोल जला एको प्रोडक्ट किनला नेक्स्ट से सेविंग करे मैं गारंटी बा तो उगो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाला तो परफॉर्म को सर्विस रहेला एगो सर्विस के एगो एगो एगो नेचर ऑफ कंप्लेंट सर्विस है कैसे जैला को एगो प्रोडक्ट करें बोला जाए कि रिपेयर करें ये लोग रिपेयर की करके ढेर लेता होता तो प्रॉब्लम है सर्विस की तो हमने क्या देखा और ही बार कंप्लेंट आवेला जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहेला एगो कंप्लेंट आवेला जो क्वाजा बिजनेस टू बिजनेस है तो हमने लगे हमने कौन से माते प्रोटेक्शन कौन से माते ऐसा ग्राहक के राज के सुरक्षा कैला सा तो हमें देखिए सर कौन कंप्लेंट आवेला डेपा कौन कंप्लेंट कौन लालवा कुवे करता जैसे एगो फौजी बा इलेक्ट्रोमिनाजे एगो लालवा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अपायंस हिसाब से देखी ला सा कंप्लेंट कहाँ पर गिरेला कौन चीज कौन प्रॉब्लम होलबा कहाँ नीचवा है तब एक्शन लेला आप डाके है अब एगो कंप्लेंट आए जे एगो एगो आदमी एगो ग्राहक एगो आदमी के देख लो काम करके दरमियान काम नहीं करता तब आसपा कौन सी बात है प्रॉब्लम हो जा कौन था चलो चला तब हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी ला सर जब देख ला सर हमने मिनिस्टर पर नहीं गिरी ला तब बोला सर वो केस करके सिविल जाए के इस पर लाकू जाए के हमने मिनिस्टर हमने लगे केस क्रिमिनल करी ला सर सिविल ऑडियो अदमिया छाना करेगी क्रिमिनल वाला जो लालवा बोलेला हमने केस हुआ जब एगो कहाँ कहे बदल क्रिमिनल जब एगो एगो कंप्लेंट कर ला तब इंक्वायरी के दौरान जब कर ली सर तब लिखा ली सर एगो एगो एगो सिचुएशन में अली सर जब कंप्लेंट हुआ निश्चित से रिजूट करी दुनिया को जब ब्लॉके कर बा तब कुछ कह सर तब जैला सर लाखू के देखी सर तब अमीनक बनाए ला सर ओके स्टेटमेंट दिला सर तो केस आवेदन कर सर लाखू अब लाखू डिसीजे करी केसवा कौन छो कहाँ पर जाए तब वही खातिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोला सर आदमी लोग के एगो रेजोल्यूशन लेके दो बोस पर अति से मजा कंप्लेंट यहाँ पर सॉल्व हो जाए नहीं छा लाखों के लेटू सब करके वो झंझा रहा बोला तो वही खातिर

0: जाहिर लसा जब को नका ने हुला ने से क्या सब कुछ कई तब लाख हुई जा तब बस की हमनी को एनफोर्समेंट ऑफिसर है सा हमनी को लीगल होता ने है सा लीगल लाखू कहला तो लाखू के हम के लॉस लॉस स्टेज है कोर्ट के जाके जब लाखू दे से कहला कैसे कंप्लीट हो इस बार कौन के का हित में जाए बेस ऑन हाउ बन बन बन डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस है सा और लाखू दे से कहला कौन कौन सी कौन डिसीजन ली
1: तो पिछला दो तीन साल की स्टैटिस्टिक का बता बता एक मतलब जन एकर संख्या बढ़ता के मतलब कम हो होता
2: जैसे हम ढेर एडमिशन करेला से सौ टू सब में जाएला से बचाएला से तो देखा थे ऐसा जस्ती ग्राहक लोग जाने लग सा एगो कंप्लेन करे कम से आगे नहीं जाने से लग सा कंप्लेन चला करे के नहीं करे के का का हुई एगो फौजी की लग सा फौजिया डिफेक्टिव बात डॉक्यूमेंट में डाल लिए सा अब नहीं है सेंसिटाइजेशन एजुकेशन जन सबसे करेला कंसोमाते लोग जस्ती जागरूक हो गल बात जस अब देख रहा सा जस्ती कंप्लेंट मिलेगा मैं सिलमा कंप्लेंट वो जब मिला था ते तब ट्रेडर लोग और लोगों निमन से कंप्लेंट वा हैंडल कर रहे सा तब देखा था इसे को बैलेंस बातें जितना कंप्लेंट मिला था लाओ 85% सब कंप्लेंट वा एक रीजनेबल डिले में जैसे बोली रहा सा सॉल्व हो जाला
1: अच्छा
2: जो बाकी 1-2% रह गल बा वो लोग में जैसे गो बीच के समाधान नहीं मिला बा तो इन्हें थोड़ा कंप्लेंट ज़्यादा लाकू कोनो ग्राहक को बोला नहीं नहीं अब नहीं आगे
1: नहीं जाइए
2: नहीं तो है जे कंप्लेंट वहाँ फिनी हो जाए
1: तो कबो कबो ऐसे हो जाला कि जो एक कंप्लेंट उन लोग दर्ज कर लन जा एक परिणाम से उन लोग संतुष्ट नहीं हो बिला तो
0: हाँ जब नहीं होला कहे नहीं होला हमने लालवा के हिसाब से एक सोल्यूशन दे दी सा जब वो के नहीं सेटिस्फाई होला तब देखिए सब बोले से कुछ करी हमने लाइक केस क्रिमिनल और सेटिस्फाई नहीं हुई तब देखा हमने तुझू आलप से को सेटिस्फैक्शन बोला सा लालवा कैसे बा लालवा कुछ प्रोविजन दे ली बा कुछ कौन एक्शन चला
1: लेके एडवाइस दे
0: जैसे बोले सा कुछ कर बा हवा प्रॉब्लम है बा लुबाब सोल्यूशन से नहीं सेटिस्फाई होता तब कुछ ना करके तो वो केस सिविल से करे पूछे के ऐसा डायरेक्टमेंट जब हमने लागे केस क्रिमिनल नहीं बनल एलिमेंट्स नहीं बा केस क्रिमिनल करके तब एलिमेंट्स की जाए डायरेक्टमेंट वो केस सिविल करे ऊपर अपन आबुका देखी अपन सब चीज़ देखी तब जाकर केस करे हमें लाइक क्रिमिनल होला हमने केस आवे के लाखू लाखू की देश देखे हुआ वो अपन अपन को मौसम से अपने करी आबुका देखी केस करी लाखू में लोजे करी तब जाए लाखू अपन केस करे दूसरा हा हमें लाइक क्रिमिनल होला मिनिस्टर को केस ऑफ फाइट होला तब देखला कहाँ पर गिरीला प्रोटेक्शन कंसुमाते खातिर हिसाब पे गिरीला ला सिविल वो देखला बोस पड़ती सब देखला कहाँ पर गिरी तब हमने के जैसे बोला सा कॉम्प्लेन मिलेला जब प्रोग्राम करें से आगे तब कंसुमाते लोग ग्राहक लोग के सेंसिटाइजेशन हो बा कॉम्प्लेन से कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आगे जाते साथ में बचाए तब आज मेरे बोलता था कहाँ जा कॉम्प्लेन करे छोड़ दे
1: गल
0: बा कुछ कर दूसर के नीला तब लोग नहीं जाते वो लालवा बा कि वो लेकर फोटेजे कहला तो वही कहने मिले कि अंकुवाजे कर दी सर जब गोजे कह सर आए कि कॉम्प्लेन करके बोलीला सब प्रॉब्लम नहीं बा कॉम्प्लेट जब वो कॉम्प्लेट होला पर्सनल फौजी के जब छा नाम दिखे जब छा हमने नाम खा दे तब जब से कॉम्प्लेट करे इंक्वायरी तो वहाँ जब से बोले कौन नाम के आदमी कौन किन ले बा कौन गाँव छी बा तब बोला गोदमी पॉपर कॉम्प्लेट करेला कि माजे उन अपन आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेला वो खुशी लग माजे वो प्रॉब्लम बा प्रॉब्लम के कुछ सोल्यूशन हो समय ऊपर नाम नहीं डिस्क्लोज करी माजे एगो प्रॉब्लम है लॉन्ग में इस पर घूम पड़े एगो एगो सीमें सुगम आज है एगो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मैं सब ग्राहक बेनिफिट करी एक आदमी नहीं देवेला कोनो देवेला वो देव हाँ नहीं पाओ कोनो आदमी लोग माजे को प्रॉब्लम ऐसे घा बा तब उसका नाम निक माजे नेम छा मेंशन कर लेके सब बोली जब फौजी होला पर्सनल के लंसर तब छा नाम लेके बस की एनक्वायरी के दौरान के छा नाम बोल के कुछ कुछ बा आलू को सफेद बोल गए जब एगो फौजी की बता गाँव ची चाहे ला मिले के चाहे रिटर्न रह के नहीं चाहे अजीज बोले के गाँव ची पर दे जाऊँ एगो पापी ने फूवे करके जब हम जब लौकेत करे तो बोले सर गाँव ची बा कि नहीं बा तो वो लोग बोला नहीं जाएगा बोले वहाँ सर गाँव ची बा तब जब से थ्री डे लिखा बोला गाँव ची नहीं बस कभी की गाँव ची है ही नहीं है वजह ओब्लिगेटो नहीं है वो लालवा होता आपके उनमें सब चीज़ एगो डिफरेंट रही अभी जो एग्जिस्टिंग लोग भाव पर काम करते सर जब जे कोई बोलेगा वहाँ गाँव ची पापी नहीं मिलेगा कोई जान सर रिसीव नहीं मिलेगा तब प्रॉब्लम हो जाए हमने के कॉम्प्लेट करके देखे कि तो नहीं जान सर के किन लेबा किका नाम में किन लेबा गाँव ची मिलेगा कि नहीं मिलेगा तब भी खाली हमें प्रॉब्लम ले ला सर सिम हम के लौके तनी तनी मजा एलिमान रहे लौके तो आगे देखिए जब सब चीज मिलेगा तब लालवा के

0: लालवा के हिसाब से देख लिया था और ट्रेडर कुछ कर लेवा तब जैसे जयला सोरे लागे था केसवा सोरे बताला
1: अभी तक हमने कितना प्रोग्राम सकब जा बोले कितना प्रोग्राम एमबीसी रेडियो टीवी के जरिए बहुत प्रोग्राम कर दिया जैसे अभी श्रीमती सिपोल जी बताई रहे कि कितना कोई अब मतलब उतना डर नहीं लगेगा आकर के अपन कंप्लेंट दर्ज करेगी सीख ले रहे सकी चाहे वो लोग के अधिकार सब
2: वो लोग के दुआ है कंप्लेंट करेगी एगो जब एगो फौजी के लिए हुआ तो ओके सेटिस्फैक्शन मिले के सकबा से भी करे नहीं कि एगो फौजी के लिए हुआ अब नहीं सकत हो से भी करे अपन पैसा भी दैला अपन लेता सब चीज भी लागल तो चाहे ला कंप्लेंट करे के और जब कंप्लेंट करबा तब जानब स तब को मैं ऐसा वो जानी जिन जिन फौजी बेच लगबा तो अच्छा नहीं बातें चला एगो सोल्यूशन किने के जामे कंप्लेंट कमती मिली
1: तो ई प्रोग्राम के जरिए हमने के काफ़ी लाभ उन लोग के दे जा जितना श्रोता जितना के दर्शक हमने के सुना अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे।

एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में हमारे अधिकार क्या हैं और शिकायत के समाधान के लिए उपलब्ध रास्तों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, इसी विषय से संबंधित आज की चर्चा इस समय आप देख

0: रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो हमारी जो दो अतिथि हैं श्रीमती सुपोल जी और श्री मितु जी, जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स हैं। और अब हमने खोजब जाने के कि कंप्लेंट के घटाई के घटाई खातिर कौन कौन कदम चाहे ना लेगी।
1: तो एगो कंप्लेंट बोले मौसम से कंप्लेंट एगो आदमी टेलीफोन के रजिस्टर कर हमें लागे, तो हमने एगो पोर्टल में रजिस्टर कर लिया सर। तब कंप्लेंट जब रजिस्टर हो जाला तब ओके एगो निमेरो मिलेगा ओकर पोर्टल में। एगो कंप्लेंट एगो आदमी पेंस के कंप्लेंट होला तो एक्शन ले ला सर। तो ऐसे नहीं होगा, मैं जब कंप्लेंट होला रजिस्टर होला सिस्टम में मिलेगा सी एस यू में, तब आदमी पर निमेरो पोर्टल ले ला। तो जैसे कंप्लेंट रजिस्टर होला तो एगो निमेरो डायरेक्टली ओकर पोर्टल में चला ला, ओकर रेफरेंस है एगो टेल निमेरो टिकट नंबर से बोला सर, ओकर रेफरेंस के कंप्लेंट है। अब जैसे है कंप्लेंट जब मिले हम लगे तब हर एगो कंप्लेंट एगो इंस्पेक्टर हमने के कार्ड में कंप्लेंटों के दीवार जला को लॉकेट करके, तब जो लॉकेट करेला तब फीडबैक देवेला आदमी कुछ होता पकड़ो डॉक्यूमेंट मौके बाला कुछ बोलेला ओके फीडबैक देवेला है। अब कौन से अब घाटा है कि कैसे बात है जब थ्रेडर लोग और कौन से माते उनके धुआ जाने ला तब एगो कंप्लेंट काहे होला मिला गई। प्रोमियम वो कंप्लेंट होला जब एगो आदमी को प्रोजेक्ट किन लेवा जैसे वो कमियासा लगे वो प्रॉब्लम हो तो हम ही लग जाए ना जैसे कौन से कमियासा वहाँ लगे वो कंप्लेंट करी हमारे लापारी ने छवा टूट गलबा लालबा बला बनाए कि जब हुआ जाए वो लापारी बल के रिटर्न हो जाए तो हम ही कंप्लेंट नहीं करी बस कि प्रिलिमिनरी स्टेप में वो कंप्लेंट सॉल्व हो गलबा। जब हुआ गल तब दिखा था कमियासा वहाँ जहाँ किन्ने बा प्रॉब्लम करता तहदी करता है करता ओके बता अकाल आए के हाउ सेवन आए के
0: तब
1: जब आदमिया फाचिगे हो जला है सब दाफेवन से स्ट्रेस हो जला तब बोला कुछ कर कुछ
0: नहीं कर।
1: हाँ तो दीपो है कोनो आदमी एक सेवन के बाद कैला कंप्लेंट कोनो आदमी आता कैला एगो बाजार को व्यवसाय कर लीता जला एन मुआ दे मुआ तब हमें लगावला दे या रिजोर्ट हमें लगावला। जब नहीं होला हम वापस सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होता तब हम ही लगावला तब हम ही जब एंटेविनियर कर रास्ता प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एन चुमा काहे कुमाउस में कहे नहीं जाता लोग प्रोसीजर प्रोसीजर आदमी शास्त्री कुछ कंपनी में के तब हम ही मिनिस्टर के चर्चे इंटरवीन कर रास्ता लालवा पर आधार पर एक्शन ले रास्ता तब काम में हालियल हो जाला। अब कंप्लेंट कहा जिम्मे कर सर अब आदमी लोग के सब कुमौसमा में ऑन द आउटसेट कुमौसमा में थ्री डबल सही को यहाँ किन लेबा हुए से प्रॉब्लम सॉल्व होता तो हमें कंप्लेंट कम थी होला जो आदमी कंप्लेंट नहीं करेला चाहे वो प्रॉब्लम चला समझो कि कंप्लेंट का कौन छा फिर आदमी सैटिस्फाइड में गुजाफे से देखो प्रोड्यूस से पर सर्विस से तब हमें लग आवेला तब कुमौसमा में से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हमें लग नहीं आयु तब देखेला और जो प्रोमियर कुमौसमा जो उनके सोल्यूशन मिला वो सैटिस्फाइड नहीं बा तो हमें लग आवेला तो हम ही देखला सर लालवा कुछ बोलीला तब दौरान से बोसा को रेजोल्यूशन सबसे दी तब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कमियासा लोग जागरूक हो बाकी कौन सब प्रॉब्लम कहाँ है पफल को प्रॉब्लम आदमी साफ है तो और होला जैसे एगो एगो एगो एगो कंप्लेंट कर ला एगो पी एस मशीन में टूटल बा तो पफा पी एस वहाँ नहीं रहेला चला एपूर्ति करके तब हाउ ले चवा मैं तीन तो और जला जे गाँव से नहीं पहुँचवा में तो जैसे लालवा बोला चुके छाला सब पूछे देखे सर्वे करके जे गाँव से नहीं रही तब माला कर गाँव से लालवा नहीं हिलेला तब कुछ अतान करके पी एस वहाँ आए कि तब बनाए के तब पफा हमने एस पी ए के रह सकला क्योंकि पोछे जो ऐसे है तो पफा समझ लंग से पफा नहीं समझ लंग से जब नहीं समझ लंग से तब तब जैसे कोई दूसरा केस कर
0: सर मैं कितना समय लगे लाए को कंप्लेंट आप लोग के यहाँ मतलब सुलझावेगी
1: देपा हाँ जैसे चाहे बड़ी नीचे वो कंप्लेंट जैसे एगो बा एगो आदमी कंप्लेंट कर लेगा एगो एग्जाम्पल दो था एगो आदमी कंप्लेंट कर लेगा एगो प्लस गर्ल एगो स्पैम से को लाभ चीज में बोला फ्री नहीं बा तब वो कंप्लेंट कर लग तब कंप्लेंट कर लग आज कल हमने किस बार दो दिन बाद हमें कंप्लेंट मिला गर्दी सा एक्शन ले सी ले ली सा जगह का तब कंप्लेंट बोली सा कुछ हल बात एक समय हो जाला अभी वो कंप्लेंट बा डिफेक्टिव प्रोजेक्ट वाले वो प्रोजेक्ट नहीं छा तब चाहे ना कंप्लेंट कर लेके वो लोग ये कुछ बोलेला गाँव ची बा दूसरा दिए कि दीपा हाँ कौन कौन कौन प्रोसीजर है एवरेजली एगो एगो कंप्लेंट सिंपल सिंपल बा एन समय में हो जाला दीपा हाँ जैसे हमके कंप्लेंट मिला लुटो की लुटो किन ले बा हाई हाई प्रॉब्लम हर कॉम्प्लेट तो इतना लंबा जाला वो डीपा हाँ पसी ढेर चीज चाह एलिमा डाल के जब वो कॉम्प्लेट मिला चेक करके जाके वो दूसरा प्लस तो वो जिखे खा डीपा हाँ तो वहाँ वो कॉम्प्लेट सकीला प्रॉब्लम हो लोग लापाही से सकता जस्सी लेता ले सकीला कमती लेता ले वो डीपा हाँ केस टू केस वो कॉम्प्लेट करके
0: जब एगो मतलब एगो व्यक्ति वो कॉम्प्लेंट करेला तो परिणाम कौन एक्सपेक्टेशन पहला
2: ज्यादातर केसेस में देखी

0: आगे करके फौजी आगे तूने करे रंग सा जब फौजी आगे तूने होल ग्राहक ले लग देखा था सकता सेवी करे साचिस पे वाते ता हाइजे को प्रेतो आप बन हो जाला अब जब कबो एगो फौजी गल के पारे करे आ घरे सेवी कर लंग सा फिर से टूटल तब फिर से गल के पारे करे तब ये थोड़ा जस्ती लंबा ले ला जिस सेम नेचर ऑफ प्रॉब्लम हो तब चाना दूसर चीज वहाँ थ्रेडल के बोली रहा सर काहे फौजुआ हर कुछ टूटा था चाहे ना देखे कि कोई प्रॉब्लम बा इन डेफ तब इमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ा जस्ती लेता ले वेला से मॉल आप पीपल जितों जब ग्राहक के कंप्लेंट करेला वो लोग के वो लोग आतान करे लंग सर कि वहाँ जाओ लोग के कंप्लेंट हाजिर से लंबा प्रोसीजर है लंबा कबो रेजोल्यूशन मिली नहीं मिली सब मिनिस्टर पर नहीं दीपान बातें सब लाखों पर दीपान माजिस्ट्रा लोग के दीपान
1: और कबो कबो देखला जा कि कोनो जो ग्राहक कोनो उपभोक्ता वो हिचकिचावे ला एक कंप्लेंट दर्ज करावे कबो कबो बोले जा कि हमार तक कंप्लेंट तक छोटा है देन वो कंप्लेंट वा नहीं दर्ज करी तो इमें उतनी छोटा के बड़ा कंप्लेंट तो कंप्लेंट रहेगा
0: हाँ कंप्लेंट छोटा बड़ा नहीं है एगो प्रोजेक्ट किनला एगो सर्विस लेला उमें सैटिस्फैक्शन मिल उतो लोग के हक है चाहे ला आगे आए के बोले के हम पैसा पे कर ली तो हम हमके सैटिस्फैक्शन नहीं मिला था हमारे प्रोजेक्ट हमारे सर्विस से तो का सकब करे एंड कमीशन के ओब्लिगेटरी बातें एगो समाधान दे के जैसे बातें प्रोजेक्ट किनला प्रोजेक्ट ने डिफेक्टिव है लोग के चाहे ला रिपेयरेशन करे के
1: और रही बात ऑनलाइन खरीदारी ये तो अभी आजकल के मतलब कैसे बोलो अब जा आजकल सब कोई ऑनलाइन खरीदारी करे तो ई में जो कंप्लेंट मिलेला तो ई अलग है जो कंप्लेंट हो जाला
0: हाँ
1: कैसे के लोग
0: ज़्यादातर देखला सब कंप्लेंट ऑनलाइन अब तो एगो रेगुलेमेंट है बातें आज सच ऑनलाइन में से मां सब कोई ऑनलाइन बेचा था नेसेसरमेंट एगो कमीशन हो वो लोग के रजिस्टर्ड बिजनेस में बातें तब हमें डिफिसिल हो जाला कंप्लेंट जाए के इन्वेस्टिगेशन करे के ऑनलाइन बिजनेस में जब एगो खरीदारी कर एगो गारंटी नहीं देवे लंग सा कबो गारंटी नहीं देवे लंग सा कबो कंप्लेंट ग्राहक लोग बोले लंग सा जब अब टेलीफोन करता तो टेलीफोन बंद बातें तो इस सब फिर से जैसे आगे बोल रही है सब कौन सुमाते के रिस्पॉन्सिबिलिटी बात जब एगो प्रोजेक्ट किना था ऑनलाइन चाहे ला रिव्यू चाहे ला सब चीज़ देख के चाहे ला जाने के कि ऑनलाइन बिजनेस हुआ एगो रजिस्टर्ड बिजनेस है उबिया कि एगो इंडिविजुअल इसने एगो प्रोजेक्ट लेके बेचा था ते इस सब चीज़
1: तब ओकर प्रक्रिया अलग
0: बात प्रक्रिया अलग बातें कबो जब हम के मिनिस्टर से नए समाधान नए सकअप सब कुछ करे तो ला पुलिस को विदा करी ला सर जैसे एगो केस फ्रॉड होगा जैसे कोई कोनो ग्राहक लोग फौजी फौजी पे कर दे ले होन सर तो कबो ने लिवरेजन सामे नहीं कबो ने होल बा
1: तब जब पुलिस वे
0: हाँ तब ये को का फ्रॉड में गनाई जैसे अब टेलीफोन करा था ते तो आदमी वहाँ ग्राहक कमीशन वहाँ टेलीफोन नहीं लेवा था वो भी आदमी वहाँ के ब्लॉक कर दे लग बा तब कहाँ जाए
1: तब ऐसे में आप लोग सकबक मजे को मतलब एडवाइस दे कि ई सब हाँ। जो कॉम्प्लेंट वहाँ चला फोन के जरिए तो आप लोग फोन करके बोल सकब
0: हाँ फोन करके लोग के और ये हमें के सेक्शन में हमें के ऑफिशियल लोग बातें कॉम्प्लेंट वन देखें सर तब हम ये के मिनिस्टर हुए से कॉम्प्लेंट वन कमिश्नर दी पुलिस के विदा कर दिला सर तब हो जा वो लोग देखें सर कोई
1: मौसाफी जारी रही लाभ
2: हाँ, जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन एगो सुविधा है सबको के अभी वो ट्रेन बग मार सबको घर बैठे फौजी से कमान करे इसमें सब चीज में एगो एगो रिस है मजा एगो रिस है मजा फौजुआ तो पागे नहीं जो देख रहा बस कि सकेला को फौजु है कुल बात डिलीवर बहावला तो हमने जैसे बोला सर ऑनलाइन एगो एगो जैसे ग्राहकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखे के कि नहीं कि ना वो कि छा के देखे बस कि जैसे जो बोले सर राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू चूज वो लोग के आधार पर बा तब वो कि छा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जैसे बोले सर जैसे एगो एगो एगो एगो एगो प्लस में ऑनलाइन बेचा था देखा कल को फिजिकल एड्रेस बासों बागो बिजनेस बा सगलो सगलो ऑनलाइन में दिवा था जब वो प्रॉब्लम था कार सकबा वो जाए जी तो प्रॉब्लम नहीं रही

0: तब एगो सुविधा सके मिला मिला के। अब एगो ऑनलाइन खरीदारी के ना बिजनेस रजिस्टर ने हे लालबाग रेगुलेट ने करेला, अब ग्राहक ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किनलक, तब ओके थोल हमें, अब ओके बोलन सा पे कर, जूस कर, पैसा ट्रांसफर कर, तब हो अपन बिजनेस करा था, प्लीज क्लियर के बोलता ग्राहक को बोलता बेखीने के चाहना, तब हमने जैसे बोला सा तू लेता हूँ जब कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन की सहसरी करा का है, पसी जब आए बता भोजवा देख बता रहा ना तब पे करता जितने साक्ष होता नहीं पे करा, और वो मैं ऑनलाइन में रिसी नहीं है गाहौची नहीं है, अब कल वो कॉम्प्लेंट बोलता हमने के इन्फॉर्मेशन होता मौके पर कौन कैसे इंक्वायर कर सकता प्रॉब्लम जरा, तब उनके बोला हेला झेकते मैं जाके साहब काम नहीं ला पुलिस कार्रवाई करके, तब ला पुलिस तब ऊपर आप याद रहे से जिला कहाँ पर बिजनेस करेगा।
1: तो कभी ऐसा स्थिति चला बा जब कोई कॉम्प्लेंट शिकायत कोई दर्ज कर दे बा पर वो लोग के अपन जिन मतलब समाधान नहीं मिलल बा तो मतलब गुस्सा कर लन सिपा मंत्रालय से ऐसे
2: जैसे बोलिए डिफिकल्ट कस्टमर को ग्राहक लोग नहीं समझे लंग सर लालवा
1: का शोभा नहीं देवेला,
2: हाँ ये शोभा नहीं देवेला सर म टॉक पोसी हैंडल कर लेला सर
0: बिल्कुल ग्राहक डिफिसिल हा हमके साथ कॉम्प्रोमाइज के साइकोलॉजी हा ओके वो ओपिनियन बना के आलवा हमके छा ऐसे करे के ऐसे करे के, तो हमके लालवा है ना लालवा ऐसे बोले ला तब बोले सर अभी हमने ओके कौन से माथे के प्रोटेक्शन नहीं किया सर, जब आदमी पहुँच के ला प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन से माथे तो पैसे हमने के मिनिस्टर के नहीं कथा ही नहीं गिरेला, तब लासौते वो अपन प्रोसीजर करी, तब पफा बोले सर हियाँ कर लेगा कॉम्प्लेन तो हुआ चल गबा कुछ हो जो फीडबैक नहीं मिला था, तब बोला सर कौन सा हुआ चल गबा तो चला हुआ से देखे कि हमने के संपर्क करे वहाँ पर ही हमने सबसे बोले कुछ हम वो लोग के प्रोसीजर जिस पर हमने बोला सर तो पफा लोग नहीं सैटिस्फे होला बोला सर नहीं कॉम्प्लेन कर बा हियाँ कुछ हो एक्शन नहीं लेते सब मजा कॉम्प्लेन की
1: तो शिकायत और उसके निवारण का अधिकार एवं तंत्र इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई विचार हो आप 2408 पर हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं।

0: आज की चर्चा इस प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं शिकायत और उसके निवारण का अधिकार एवं तंत्र मतलब इस पर चर्चा करते हुए इस विषय को जारी रखते हैं। तो अगर देखा जाला हमने के जो बुजुर्ग लोग रहला वो तो 185 यानी एन विच सैंक या फिर जो आप लोग यहाँ के जो निमेरो रहला तो वो लोग सकेला कोई कॉम्प्रेट रहला मर बुजुर्ग लोग तो वो लोग नहीं सके करी तो वो लोग के कौन कौन सुझाव कौन ची बोल बा लोग के
1: देखिला सब कबो बुजुर्ग लोग टेलीफोन नहीं सके लंग सा करे बेन निमोरो ने याद रहला तो कैसे दर्ज करियन सा अब ओ लोग के तो कबो मेल वो नहीं सके लंग सा बिया करे इलेक्ट्रॉनिक मेल
0: या व्हाट्सएप
1: और ए बेन में आके तो डिफिकल्टी मिले ला ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा अवेलेबल कबो नहीं रहला तो लोगों खातिर एगो सुविधा बाटे ओ लोग के रीजन में जैसे बोले सा कब ऑफिस बाटे सब रीजन में कब ऑफिस बाटे तो सकियन सा कब ऑफिस जाए हो जब ऑफिसे बाटे कब ऑफिस में ऑफिसे काम करेला मिनिस्टर हमी के मिनिस्टर के ऑफिसे ने हाँ कब ऑफिस के ऑफिसे हो वन सा तो वो लोग के कंप्लेंट दर्ज करियन सा तब कंप्लेंट वाले लियन सा पारे नाम नेचर कंप्लेंट निम्बो टेलीफोन एक्सेट्रा तब कब ऑफिस का करेला हो कंप्लेंट वहाँ हमी के मिनिस्टर में भेजेगा तब जब हमी के मिनिस्टर में आवेला तब हमी हैजा से शुरू करिया सा लॉन्ग के टू सा
0: ऐसे देखा चला तो कब फिसवा सघरो हमने के देश में
1: हाँ
0: ऑल अराउंड
1: रीजन वाइज
0: तो ऐसे होला कबो कबो
1: हाँ हमें के ढेर कंप्लेंट मिलेला कब फिस
0: परिसे और मतलब जैसे सोशल मीडिया देने से कबो कबो शिकायत देखी ला जा तो सोशल मीडिया पर शिकायत करना और आधिकारिक शिकायत दर्ज करना मतलब क्या दोनों में कोई अंतर है?
1: हाँ अंतर है। जब एगो ऑफिशियल कंप्लेंट करब तब ऑफिशियल लोग जाला इन्वेस्टिगेशन करे। सोशल मीडिया में तो सब कोई सब चीज सकेला कमेंट में डाली ई सब कमेंट वहाँ हमी के मिनिस्टर नहीं लेवेला ऑन कंसीडरेशन। जब एगो कंप्लेंट रहेला तो चना ऑफिशियली कंप्लेंट वा करे जैसे बान समाधान बोली मीडियम बातें कंप्लेंट करके टेलीफोन व्हाट्सएप ईमेल कब ऑफिस उबिया मिनिस्टर आए के हाई सब मीडियम माध्यम से कंप्लेंट करब
0: तो लोग के
1: हाँ वो लोग के कंप्लेंट दर्ज करब सर तब इन्वेस्टिगेशन सोशल मीडिया पर नहीं
0: ई मंत्रालय ई में मतलब
1: एगो अभी ले एगो पॉलिसी ने बातें ई पर सकेला फ्यूचर में हो ये नेसा कब सब बोले मैं अभी आजाद डेट कौन जाए सोशल मीडिया के कमेंट पर हमें कंप्लेंट नहीं लिया सर
2: नहीं इस बोला सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म सबको एक्सेस है एक्सेसिबल है सबको ये तब एक प्रॉब्लम होला तब एक आदमी लोग अपन ओपिनियन दे बोले लंग सा सब हाई नेट छबा उकार एक्सपीरियंस के दौरान से वो बोला हाई नेट छबा सके लो आदमी को अच्छा लगो तो तब वो बोला ऐसे नहीं थे कमेंट के पर हिला कि नहीं पर हिला तब वो ऑफिशियल लगो सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म जब एक आदमी को प्रॉब्लम बा पारे देखा था एक प्रॉब्लम भूल बा वो पहुंच सके तो को प्रॉब्लम बा पारे जैसे बोलते हैं कंसुमेंटर के तो सके हमें लगे टेलीफोन करे तो वो कंप्लेंट दे ऑफिशियली तो ऑफिशियली को कंप्लेंट होला था ऑफिशियली ओके निमोरो मिलेला तब लॉन्केट कमेंस होला।

0: Ne se ki jay bole social media me go problem ba pro solution e milata ta ta koi action le hamne ke go rules and regulation hamne jise ke how ke dauran se kaam kiya sa phule go official complaint mili to officially hamne ke competent mili ya ke lockit karke na tab uke feedback diya sa official kuch bolla dema pa naam de apan ko dene de kin bo telephone ne kaha par kinne ba kuch kinne ba kab kinne ba gaon ji bhai sa f mausam ke chahila ki lockit ko mausi karke jab ek social media me apan opinion la do acha ba ja to opinion तब हमने लोपिजा नहीं लिखा था ना हमने के मिसा सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हाउ पर नहीं काम किया तो ओकर गो एगो सीट था हमें कभी कंप्लेंट रजिस्टर किया था सीएसयू में हाउ पर काम किया था आदमी सुने कहला ईमेल आवे कहला टेले आवली बिरो आवेला तो कंप्लेंट जैसा ऑफिशियल तब एक्शन ले जैसा ऑफिशियली अच्छा बात सोशल मीडिया में अपन अपन लोपिजा दे है अच्छा बात सबके जानकारी मिला था संभाली ऑफिशियल ने हम इंस्टे के
1: और उपभोक्ता के मतलब खरीदारी करे रन से कौन कौन डॉक्यूमेंट या एविडेंस चाहे ला तो जैसे मतलब संभाल कर उन लोग के रखना चाहिए जैसे आप लोगों ने बोला उसका रिसीप्ट इनवॉइस वारंटी सब लोग के चाहे ला रहेगी
2: ये सब चीज़ ऐप होता है ना कि जैला एगो मंगासा में किन ले ला पैसा पे कर दे ला ना कुछ ले ला डॉक्यूमेंट सब नहीं ले ला अब प्रॉब्लम होता
1: बहुत जरूरी है
2: बहुत तो मगाजा में ढेर क्लियर हो तो लोग के इडेंटिफाई करे के है जे किनले हुआ उबे दूसर मगाजा में तो प्रॉब्लम हो जाला चाहे ला एगो प्रूफ दाशा तुले तो रहे के
0: तब एगो हाय एगो आदमी जब किनले को फौजी पक मच हम हमें को फौजी किनली एगो दूसर आदमी के नाम उ किनले मा फौजी बस हम गेली फौजी वा किने ओकर नाम बस मो तब आदमी तब एगो प्रॉब्लम होल जब जो रिसीट आदमी के नाम पर बा वो कंप्लेट नहीं करता सब ओकर को फार्म ही कंप्लेट करता तब बोई ला सा हाउ आदमी कंप्लेट ऑफिशियल दिस इज लीगल ओनर ऑफ द गुड्स आदमी हजन को रिसीव बा तब आदमी तो कंप्लेट नहीं सकला करे ई करता जब केस सॉल्व होता कोई बा जब केस कॉम्प्लिकेट हो जाला तो जो आदमी को मौसम से किन लेबा ओके चलाए कि स्टेट पे लेके लाख पूजा तब वो एक अच्छी प्रॉब्लम लगा है बस आदमी के वैसा डिफरेंट ये तो दूसरा वैसा बोला था हम ही चाहते हैं कि आदमी के वैसा वो किन लेबा रिसी ओकर नाम पर बा वो पे करता काहे खातिर वो फार्मी आता करे कंप्लेंट तो बिना सर नहीं अच्छा भाई कंप्लेंट करता से मैं वो मेन मेन कंप्लेंट था जो आदमी तो किन लेबा तब इवन में जब कहो जब सा किने रिसी मांगा गाँव ची मांगा सब चीज मांगा पूछा फौजुआ कैसे कौन ची होला गाँव ची कुछ कुछ करता फौजुआ कैसे से सर्वी करके सब पूछा आगे किने के तब जब जब इन्फॉर्मेशन तुके मिल रहा है तो कॉम्प्लेन झिझकते में चलवा करी वहाँ पर ही तो हमें लग नहीं चला आए कि खूब मौसम से जब देख रहा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब हमें लग चला आए
1: तो हमें पूर्ण आशा है कि काफ़ी जानकारी हमारे श्रोताओं दर्शकों को मिला होगा इस विषय पर तो शिकायत करना केवल अपनी समस्या का समाधान पाने का माध्यम नहीं है बल्कि इससे बाज़ार में जवाबदेही के और बेहतर कंज्यूमर सर्विस को भी बढ़ावा मिलता है तो आज हमारे साथ यज उरुसा और रत्नमाला के निर्देशन में ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया और हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मतलब कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन यूनिट से आए हुए श्रीमती सुपोल जी और श्री मितु जी को इन सारी जानकारियों के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे बस सही जानकारी मिलल हुई ऐसी हम कामना करते हैं एक अगली भेंट तक आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे फिर मिलेंगे नमस्कार।

0: सर नमस्कार।
1: नमस्कार विनिशा, सभी को हमारा नमस्कार। लाकावियन फिनिक्स के लोग कल रात सड़कों पर उतर आए। वजह थी कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। वे कम से कम एक से दो घंटे पानी देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका घरेलू टैंक वाटर भर सके। अंतरिम प्रधानमंत्री अरियान नवामागी ने जनता से समझ बूझ और धीरज रखने की मांग की। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने बताया कि ये समस्या मऊवाकवा जलाशय के सूखने के कारण पैदा हुई है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जनता को राहत देने के लिए रात दिन काम कर रही है। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्खा अगले तीन महीनों में अफ्रीकी देशों और कंपनियों की पहली क्रेडिट रेटिंग जारी कर सकती है। कल शाम मॉरिशस की मेज़बानी में इस एजेंसी की औपचारिक रूप से लॉन्चिंग की गई। अफ्खा का उद्देश्य अफ्रीका की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र और भरोसेमंद आकलन करना है। इसके तहत महाद्वीप की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों को अधिक ध्यान में रखा जाएगा। लॉन्चिंग समारोह के दौरान अफ्खा की पहली संचालन टीम का भी परिचय दिया गया। हर दिन फेसबुक पर प्रकाशित करीब 20 पोस्ट को लेकर शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचती हैं, लेकिन इन शिकायतों पर कार्रवाई के नतीजे अक्सर सामने आने में समय लगता है। आपत्तिजनक और समस्याग्रस्त सामग्री की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने मेटा के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य सत्र आयोजित किया। इस बैठक में मॉरिशस में कंटेंट मॉडरेशन की कमियों को सामने रखा गया और इस समस्या के समाधान के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की गई। और विदेशी खबरों में दुनिया भर के मौसम विशेषज्ञ एलनीनो के बारे में चेतावनी दे रहे हैं और इसके ऐसी स्थिति में पहुंचने का दावा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत महासागर में भारी मात्रा में जमा हुई गर्मी के बाहर निकलने के कारण आने वाले महीनों में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म रहेगा। एलनीनो सर्दियों में भी अपनी पूरी ताकत के साथ बना रहेगा और अमेरिका को छोड़कर हर जगह पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: से मिले दिल।
1: 4:10 हो चुके हैं, सभी को वेरी गुड इवनिंग, हेलो एंड नमस्कार। मैं तो आपको कहूँगी कि आज सुबह से ही सबके दिलों के अंदर जो बॉलीवुड के लिए हमेशा प्यार रहता है, आज थोड़ी सी उदासी छा गई है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं सुबह से कि आज नाना पाटेकर साहब का आज देहांत हो गया है। और सभी, चाहे बॉलीवुड हो चाहे पूरे वर्ल्ड में जो भी उनके फैंस हैं या और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे, चाहे वो खेती बाड़ी के लोग हों या एनजीओज हों या बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग जो उनके फैंस थे, जो कि कहते हैं ना जिसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की हो और जिसने ऑरा ही बदल दिया हो, तो वो ऐसे इंसान का जाना एकदम से सभी के लिए बहुत दुखदाई है और हम सब के लिए भी। पर हम तो यही कहेंगे, आई लव यू सर, हम हमेशा आपको याद करते रहेंगे। आपके आखिरी समय है, हम लोग यहाँ पर हैं और आप सब उनको डेडिकेट करना चाहते हैं बहुत सारे गाने, तो हम भी यही चाहेंगे कि अगर आपको भी कोई गाने उनके लिए स्पेशली चलवाने हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर, और अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो 4028070 पे कर सकते हैं। और हम तो इतना ही कहेंगे, ये गाना आपके लिए सर, आपकी आत्मा को शांति मिले, हमेशा जहां भी रहें जिंदगी में खुश रहें।
0: RM3 Radio.

0: बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको सुन लेंगे।
1: देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी दो शादी किया मेरा बाप।
2: मराठी फिल्म अभिनेता विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें हम नाना पाटेकर के नाम से अधिक जानते हैं, 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। नाना पाटेकर ने अपनी अदाकारी से सभी के दिलों को छुआ है और आज हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी फिल्मों के माध्यम से वे सदा हमारे दिल में बसे रहेंगे। अंगार, तिरंगात, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, खामोशी जैसी फिल्मों के मुख्य अभिनेता, आपको हमारा अंतिम नमन।
1: देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए।
2: गुरुवार

0: अक्टूबर को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे कॉमेडी से भरपूर मूवी वेलकम। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने भूमिका निभाई थी उदय शेट्टी की। आप देख पाएंगे ये मूवी एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे।
1: आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया, संजना एयरवेज, संजना टेक्सटाइल्स, काफी फैला हुआ बिजनेस है।
2: RM3 रेडियो।

0: से मिले दिल।
1: 4:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं दिल से मिले दिल प्रोग्राम के साथ और इस समय मैं आपका साथ दे रही हूं पूनम। एक ऐसा गाना जो कि पिक्चराइज किया गया था अनु अग्रवाल और राहुल रॉय के लिए और दोनों ही उस टाइम बिल्कुल फ्रेश चेहरे थे, दोनों ने पहले कभी कुछ मूवी नहीं की थी और जब उनका स्टाइल आया दोनों का ही, मतलब राहुल रॉय का हेयर स्टाइल और अनु अग्रवाल का जो ड्रेसिंग सेंस था और उनकी ब्यूटी थी बहुत ही कमाल की थी और ऐसा लगता था कि भाई सबके दिलों में कहीं ना कहीं धुक धुक होती थी और कहते थे कि बस ये आ जाए और ये गाना बजे और हम काश इसको रिकॉर्ड कर सके।
0: RM3 Radio.

0: से मिले दिल।
1: 4:34 हो चुके हैं दोस्तों, जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं उनको तो हम यही कहेंगे भई आप खो गए होंगे यादों में, पर यादों में मत खोइए, ड्राइव सेफली, बिल्कुल सामने देखे। और कुछ लोग बस भागने की तैयारी में होंगे कि बस कब 5 बजे और हम घर के लिए निकलें, तो हम यही बोलेंगे घर भी कहीं नहीं जा रहा और आप भी घर आराम से पहुँचेंगे, बस थोड़ा सा और देर इंतज़ार कीजिए, 10-15 मिनट में 5 बज जाएंगे और आप घर के लिए रवानगी हो जाएगी। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि आप हंसते मुस्कुराते ऑफिस से निकलें, क्योंकि जब घर तो आपको भी एहसास होगा कि आज आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है। तो चलिए जी, ये गाने आप सबके लिए हैं, जिनके दिल में कुछ प्यार भरा, कुछ तूफान सा जाग रहा है, उन सबके लिए ये गाना बहुत अच्छा लगेगा।

0: रजनू, बचपन में मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाता था। मंदिर की दीवार पर एक बात लिखी थी, इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है। बचपन की सभी यादें धुंधली हो गई, लेकिन वो दीवार की बात अभी तक यहाँ चिपकी पड़ी है।
1: RM3 Radio.
2: चौधरी छोड़ो, उसे कहीं नहीं भागेगी। इसने कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए?
3: 1 करोड़।
2: मैं 2 करोड़ देता हूँ, मारो इसे। कहां से पैसे देगा ये? है क्या इसके पास? कल तक मेरे बाप के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा था, आज मेरी मेहरबानी पर जी रहा है। कहां से लाएगा ये पैसे? मारो, मैं 3 करोड़ देता हूँ, मारो इसे।
4: गुरुवार 8 अक्टूबर को MBC 16 पर शाम के 7 बजे हिंदी फीचर फिल्म हम दोनों, नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म हम दोनों।
2: तुम क्या समझते हो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमदर्दी है? रास्ते में मार देना चाहिए था तुम्हें। मारो इसे, इसके अलग से पैसे दूंगा। मारो, मारो इससे भी।

0: से मिले दिल।
1: 4:44 हो चुके हैं और बहुत सारी लेडीज़ बस किचन की ओर रवानगी कर रही होंगी और वो सोच रही होंगी कि बस ये सब आने वाले हैं परिवार के सभी सदस्य तो क्या बनाऊं। तो हम तो यही कहेंगे बस उसमें थोड़ा सा प्यार घोल दीजिएगा, वो जो भी बनाएंगे प्यार से खाएंगे। और हम तो यही कहेंगे कि जो घर आ रहे हैं वो भी बस सोच के आएँ कि भाई घर में कुछ लजीज सा, कुछ अच्छा सा, कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो आपका भी दिल करेगा घर पहुँच के कुछ स्पेशल खाने का, कुछ प्लान करने का। और अगर कहीं बाहर लेके जा सकते हैं परिवार में जो सुबह से घर पर हैं, तो बस एक ड्राइव हो जाए, लंबी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाए या छोटी सी, चाहे छोटी सी एक आइसक्रीम खा लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि घर के जो घर में इतने दिनों से बैठे होते हैं, इतने घंटों से बैठे होते हैं, थोड़ा सा ऊब जाते हैं। तो गानों के साथ तो हम आपका दिल बहलाते रहते हैं, पर हम इतना कहेंगे परिवार के साथ रहें, इंजॉय कीजिए।

0: साले बनाने वाले ने इस पे फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बात है, तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा, किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था। अल्लाहुम्मा सल्ले अला आला सैयदना मौलाना मुहम्मदी व आला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है।
1: RM3 Radio.
2: MBC TV programs की झलकी।
3: ये स्वर्ग है या नर्क?
4: ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए।
5: अबे किसे लेकर आ गया ये?
6: यार मुझे भी तो कुछ बताओ कोई।
5: भाई साहब गया था सांड को लेने, लेकर आ गया भांड को।
6: मतलब
5: भाई
6: मुझे नहीं मरना था।

शनिवार 8 अक्टूबर को एमबीसी वन पर रात के 8:20 पर हिंदी फीचर फिल्म फैट्सो 2012 की ये मूवी रणवीर शोरे और कुलपनाग पर फिल्माई गई फैट्सो

0: दिल से मिले दिल।
1: 4:52 हो चुके हैं, देखते देखते 5 बज चुके हैं और आज दिल से मिले दिल में हमारा साथ यहीं तक था। उम्मीद है 90s के ये प्यारे गीतों का साथ आपकी शाम को बहुत ही अच्छा किया होगा। और आप जो घर लौट रहे हैं, जो आराम से बैठे हैं अपने घर पे, बस अपनों के साथ रहिए, शाम को इंजॉय कीजिए। मैं थी आपके साथ पूनम, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा संजय जी का, उनका भी साथ दीजिएगा। ये आखिरी गाना विनोद राठौर की आवाज़ में बहुत ही प्यारा खूबसूरत, मेरी तरफ से नमस्कार।
0: RM3 रेडियो।
2: अरे बोलो बोलो, एक बार तो बोलो, अरे ना मत करना, मार पड़ेगी हमको वरना।

0: एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: इसमें शाम के 5 बज रहे हैं।
3: राम रसधारा रसधारा
2: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। जय सियाराम, जय जय हनुमान। सभी श्रोता भाई बहनों का स्वागत है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हमारे हफ्तावार सत्संग राम रसधारा में। आज स्टूडियो में उपस्थित हैं चार बहनें जिनका हम हृदय से अभिवादन करते हैं, माला जी, शिवानी जी, सीता जी और सिमरन जी। जय सियाराम,
4: जय सियाराम।
2: आज के सत्संग का श्री गणेश करते हैं श्री राम जी की स्तुति, श्री हनुमान जी की स्तुति और सुमिरनी के साथ। जय सियाराम,
4: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: श्रोताओं, पिछले 12 दिनों से हम सब पितृपक्ष के अंतर्गत अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता निभा रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी के सभी नौ रसों का उपयोग किए हैं। श्रृंगार लव, हास्य जॉय, करुणा सोरो, रौद्र एंग, वीर वेल, भयंकर फियर, विभत्स अवर्शन, अद्भुत वंडर और शांत पीस रसों को बाबा ने कूट कूट कर विभिन्न प्रसंगों में भरे हैं। राजा दशरथ के निधन के बाद भ्राता भरत, राम जी, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को वापस अयोध्या लौटाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पर गुरु वशिष्ठ राम जी को उनके पिता के निधन की खबर सुनाते हैं। अयोध्या कांड का ये प्रसंग सुनते हैं बहनों की वाणी में। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम राम रसधारा हर गुरुवार की शाम को 5 बजे। श्रोताओ, दुख की घड़ी में हम हमेशा मानस की चौपाइयों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि मानस सीधे हमारे दिल को छू जाता है। मानस दर्द से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए दुख से पीड़ित व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। अयोध्या कांड के इस प्रसंग में श्री राम भ्राता भरत और दो भाइयों के साथ मिलकर अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करते हैं। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: राम रसधारा रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। श्रोताओं, पितृपक्ष में पिंडदान करने के साथ साथ आश्रमों में वृद्ध जनों की सेवा अति उत्तम होता है। साथ ही साथ जिस तिथि को पितर हमें छोड़ गए थे, उसी तिथि पर अगर घर पर एक रामायण सत्संग रखेंगे तो ये भी अति उत्तम होगा। अयोध्या कांड के इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं बहनों के साथ। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: श्रोताओं, राम रसधारा के अंतर्गत आज हम खास तौर पर करुणा भाव, करुणा रस आपके सामने रख रहे हैं। मानस के एक और प्रसंग में कुछ ऐसी ही भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं, जब जटायु महाराज माता सीता को बचाते बचाते घायल हो जाते हैं तो वो जमीन पर गिर जाते हैं। श्री राम जी की बाहों

आंखों में जब वो अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और श्री राम जी उनसे पूछते हैं अगर वे चाहते तो उनका इलाज वहां पर कर पाते, लेकिन जटायु जी कहते हैं इससे सौभाग्य और क्या होगा कि वे अपने प्रभु के बाहों में अपनी आखिरी सांसें लें। और उनके निधन के बाद स्वयं श्री राम जी और भ्राता लक्ष्मण उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जटायु जी जो राजा दशरथ के करीबी मित्र थे, तो इस अंतिम संस्कार के जरिए श्री राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ के का अंतिम संस्कार संपन्न किया। जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: रसधारा।
1: श्रोताओं और कुछ ही मिनटों में शाम के 6 बज जाएंगे, तब आप सुनेंगे समाचार, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे हमारी धरोहर किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। श्रोताओं याद रहे कि इस रविवार से नवरात्रि शुरू हो रही है और माता दुर्गा की भक्ति, माता दुर्गा की उपासना हेतु हजारों लाखों की संख्या में हमारे भाई बहनें अपने अपने मंदिरों में उपस्थित होंगे और हम भी अगले गुरुवार को इसी विषय पर एक विशेष रामचरित राम रसधारा प्रोग्राम लेकर आएंगे। अभी के लिए शांतिपाद बहनों के संग जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम, जय जय हनुमान।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपकी स्वागत बा। आज हमनी के चर्चा रही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर, जोन की बरिस में दो हला मनावल जाला। एगो है 6 मई के और दूसरा है 10 अक्टूबर के। चिराई लोग हजारन किलोमीटर के फासला तय करके एगो महाद्वीप एगो कॉन्टिनेंट से निकल के दूसर कॉन्टिनेंट में जालन सा, जहाँ मौसम अच्छा बा, दाना पानी भरपूर बा।

0: का तू सोच ले हवा कि इस छोटा छोटा चिड़ई बिना पासपोर्ट के बिना मैप के हजारन किलोमीटर की सफर कैसे तय करे लन सा। साइबेरिया से उड़ के एगो छोटा चिड़ई हमने के मॉरिशस में कैसे चलावे लन सा। कहे कि उ लोग के विश्वास है कि हियाँ उ लोग के घर मिली। ये बरिस 2026 के थीम और विषय बहुत विशेष बा। हर चिड़ई मायना रखेला और उ लोग पर ध्यान देवे के भी उतना ही मायना रखेला। एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। एकर का मतलब है कि जे तोहर घर के छत पर खेत में समुन्दर किनारे एगो भी प्रवासी चिड़ई माइग्रेटोरी बर्ड तू देखबा तो जे ओकर गिनती करला तो तू वैज्ञानिक के काम करत हवा। बहुत जरूरी बा ई सब चिड़ई के गिनती करे के। आज दुनिया भर में ई बर्ड और आई नेचुरलिस्ट और एप्स पर आदमी लोग अपन आँख से देखल प्रवासी पंछी के गिनती पर ध्यान देवत हवन सा। और एकर से पता चलेला कि कौन कौन चिड़ई कमती होवता और केकर रास्ता बदल गल बा और हमने के कौन कौन झील और तालाब चाहे इलो खातिर बचा के रखे के। याद रखिया कि ये चिड़ई खाली चिड़ई नहीं है, हमने के एनवायरनमेंट पर्यावरण के डॉक्टर हवन सा। ये लोग बिया हियाँ से लेके हुआ जाके फैलावेलन सा। फसल में जोन कीड़ा रहेला ओके खालन सा और बतावेलन सा कि हमने के हवा और पानी कितना सफा बा। बकीर आज ये चिड़ई लोग खतरा में हवन सा मोबाइल टावर के रोशनी प्लास्टिक के वजह से। और फिर झील गायब हो ले जाता इस दुनिया में, उ लोग के घर भी एकर संगे संगे खत्म होता। तो आज का चाहिए करे के हमने के बस दू गो काम करा। पहला, आप अपन घर के आसपास पानी के बर्तन रखिया। दूसरा, जब कोनो चिड़ई लौकी तो खाली ओके देखिया, ओके महसूस करिया और जे हो सकी तो ओकर एगो तस्वीर लेके ई बर्ड में डाल दिया। ये रहल विश्व प्रवासी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटोरी दिवस पर आज के कार्यक्रम। कहे कि ई चिड़ई लोग विश्व धरोहर के गिनती में आवेलन सा। ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

दोबारा नमस्कार, शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। लाकाबियन फिनिक्स में के लोग कल रात पानी की कमी को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नाबामागी ने जनता से समझबूझ और धीरज रखने की मांग की। ऊर्जा मंत्री पत्रिका से आवादन ने बताया कि ये समस्या मऊवाकवा जलाशय के सूखने के कारण पैदा हुई। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रा अगले 3 महीनों में अफ्रीकी देशों और कंपनियों की पहली क्रेडिट रेटिंग जारी कर सकती है। कल शाम मॉरिशस की मेजबानी में इस एजेंसी की औपचारिक रूप से लॉन्चिंग की गई। अफ्रा का उद्देश्य अफ्रीका की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र और भरोसेमंद आकलन करना है। फेसबुक पर प्रकाशित आपत्तिजनक और समस्याग्रस्त सामग्री की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने मीटा के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य सत्र आयोजित किया। इसमें मॉरिशस में कंटेंट मॉडरेशन की कमियों को सामने रखा गया और इस समस्या के समाधान के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की गई। मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। आज टर्के उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। महाराष्ट्र

0: महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और अब पेश समाचार विस्तार से। लाकावियन फिनिक्स के लोग कल रात सड़कों पर उतर आए थे। वजह ये थी कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। वे कम से कम 1 से 2 घंटे पानी देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका घरेलू वाटर टैंक भर सके। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नाबामागी ने जनता से समझबूझ और धीरज रखने की मांग की। ऊर्जा मंत्री फातिका सियाबादेन ने बताया कि ये समस्या मऊफाकवा जलाशय के सूखने के कारण पैदा हुई है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जनता को राहत देने के लिए रात दिन काम कर रही है। इस पर काविंता पेसा की रिपोर्ट पर अशिता रघु का विवरण पेश है।
1: सैपोल के बिशोलीन में कल शाम स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। पानी की किल्लत से परेशान वहां के स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और मुख्य सड़क को बंद कर दिया। उनकी मांग थी कि रोजाना 1 से 2 घंटे पानी की आपूर्ति की जाए ताकि वे अपने घरेलू पानी के टैंक भर सकें। इलाके के सांसद भी मौके पर पहुंचे।
2: C'est pour cela que moi, avec Ouchard, nous gagnons, nous apportons le soutien, nous progressons avec eux et nous faisons l'appel. Encore une fois, moi, je redemande à mes habitants, nous débloquons la rue parce qu'il y a un chemin bloqué sur la côte municipalité.
3: Moi, je l'appelle dans une situation pareille, de crise. Au moins, la CWA prend la responsabilité, l'ordre de l'eau, au moins désertant, avec un peu de pression pour dire remplir ce tank.
1: CWA की ओर से भेजे गए पानी के टैंकरों ने पूरी शाम इलाके में कई चक्कर लगाए और घरों के पानी के टैंक भरने में मदद की। रात करीब 9 बजे मुख्य सड़क को खोल दिया गया और स्थिति सामान्य हो गई। मऊवाकवा जलाशय में पानी का स्तर कम होने के साथ साथ मीनील जैसे सहायक जलाशय भी प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा और सार्वजनिक सेवाओं के मंत्री पातिका सियाबादेन के अनुसार यही लाकावेन और फिनिक्स इलाके में पानी की आपूर्ति में आ रही समस्याओं का एक कारण है। मंत्री ने आज सुबह लामारी वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन का दौरा किया।
4: Qui fait ne pas qu'un problème là qu'il faut parce que quand réservoir Ménil est rempli, nous pas pérer ici à 18 pieds. Nous peut arrive l'eau 15 pieds. Sans montrer qu'il y a un manque d'eau entre 15 et 18 pour un manque de pression. Ça veut dire qu'arriver, c'est qui dit mon qui habite alimenté dans sa région là, l'île ça tous les jours quand ça monte, il vient 15 nous donner et n'a dit mon pas gagné. Demain quand il est rempli Livine 15 ou Livine 14, j'y parais gagner encore. C'est même qui vous t'envoie, il y a 3 jours pour gagner des loups. Nous avons un manque de loups pour qu'il n'y ait pas d'aliments de savane réservoir là. Alors, l'INF, mais seulement nous pouvons gérer avec ça qu'il nous a. Il n'y a pas une situation idéale. Moi, j'ai une compassion terrible là. Je comprends quand je trouve du monde, puis en colère, puis je comprends. Moi, pas, au contraire, je ne suis pas en colère, ça va du monde là. Je comprends. Qu'ils ont pu souffrir parce qu'ils ont des lots, ils ont besoin des lots pour vivre. C'est pas possible, c'est 3-4 jours. Mais nous avons une situation qui nous peut bien gérer telle qu'il était.
1: पानी की इस किल्लत के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री आर्याना वामागी ने भी मॉरिशनों से सहयोग की अपील की है।
5: Nos réservoirs pas pé remplis comme on besoin rempli. Et deuxièmement, il y a un tuyau qui demande à être remplacé depuis des années pas fini remplacé et ça. Pour un projet à long terme, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème tout de suite, mais tigit, nous sommes capables de régler les. Donc, je demande de faire l'appel à la population et dans un tigit compréhension, un tigit patience. Donc, donne-nous coup de main, comment dire, pour essayer de trouver une solution à ce problème-là.
1: इस बीच सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने जमीनी स्तर पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और लोगों से पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है।
0: हमारे जलाशयों में खासकर मऊवाकवा में पानी के स्तर के चिंताजनक स्थिति से कम होने के कारण CWA पानी की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है। आज सुबह ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने लामारी ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और समाधान ढूंढे जा सके। इस पर पेश है ये रिपोर्ट।

0: लामारी में पानी की कमी का असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। मोगोवाक्वा जलाशय पर निर्भर इस वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन को अब सामान्य क्षमता की तुलना में काफी कम मात्रा में पानी के साथ काम करना पड़ रहा है। उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 अक्टूबर को मोगोवाक्वा में पानी का स्तर सिर्फ 35.9% था। आमतौर पर लामारी वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन तक हर दिन करीब 1,10,000 क्यूबिक मीटर पानी पहुंचता है, लेकिन अब इसमें काफी कमी आई है। मंत्री पत्रिका सियावादेन कहते हैं कि आज स्तर 56,000 क्यूबिक मीटर पहुंच गया है, कल 61,000 क्यूबिक मीटर था। हर रोज ये घटता जा रहा है और इस 56,000 क्यूबिक मीटर पानी को इन इलाकों के 1,05,000 बाशिंदों में वितरित करना होगा जो लामारी स्टेशन से आपूर्ति लेती हैं। इसीलिए 2-3 दिनों से पानी बंद है। मोगोवाक्वा से स्वयं लामारी को आपूर्ति करने वाला पानी बंद हो गया है। CWA वहाँ पानी ने नहीं गया, यहाँ स्वयं ही कम पानी सप्लाई आ रहा है, अतः हमारे पास जितना पानी है उससे ही काम करना पड़ रहा है। इसलिए प्राथमिकता अब पानी के दूसरे स्रोत तलाशने की है। CWA के टेक्नीशियन नदियों के पानी को फिल्टर करने के लिए विशेष उपकरणों के इस्तेमाल की संभावना तलाश रहे हैं। इसके साथ ही नए बोरहोल्स से पानी निकालने पर भी विचार किया जा रहा है।
1: Nous pérons dès l'eau dans la rivière qui est là autour de Mogovaqua ou la Marie.
0: हम मोगोवाक्वा तथा लामारी के आसपास की नदियों से पानी ढूंढ रहे हैं जिसे नेटवर्क में पानी भेज सके, जिससे 110 से 156,000 बाशिंदों को पानी उपलब्ध कराया जा सके। हमें आने वाले सप्ताहों में 13 अक्टूबर तक इलाके के बोरहोल्स को लामारी की नेटवर्क से जोड़ना है जिससे क्षमता बढ़ सके, यानी 70,000 क्यूबिक मीटर पानी नेटवर्क में भेजा जाएगा, क्योंकि हमें 110 से 56,000 बाशिंदों के लिए पानी उपलब्ध कराना है।
1: 60,000 मीटर क्यूब डेलो एंकोर लो सा रेजो ला मारी ला कि फिर नू पे फेयर सा पू कॉम्पेंस सा पेर्ट एंट 110,000 रोजी ए 56,000।
0: एक और विकल्प के तौर पर लामारी वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन के जलाशयों के प्रबंधन की समीक्षा की जा रही है ताकि पानी की आपूर्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके और नेटवर्क में पानी का दबाव भी सुधारा जा सके। CWA स्थिति का अध्ययन कर रहा है, जहां देखेंगे कि हम टैंक को पूर्ण रूप से प्रेशर के साथ भर पाएंगे और इसके बाद 2 इलाकों में आपूर्ति कर पाएंगे। कल एक अन्य इलाके में वितरण पूरी क्षमता यानी प्रेशर में कर पाएंगे, अतः जिन्हें परसों पानी मिला है उन्हें आज पानी नहीं मिलेगा। सभी के पास टैंक होना जरूरी हो गया है। फिलहाल सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव कर रही है और पानी के टैंकरों का इस्तेमाल भी बढ़ाने की तैयारी है। बारिश लौटने का इंतजार है, तब तक पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल और उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है।
2: अफ्रीका क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी यानी अफ्खा अगले 3 महीनों में अफ्रीकी देशों और कंपनियों की पहली क्रेडिट रेटिंग जारी कर सकती हैं। कल शाम मॉरिशस की मेज़बानी में इस एजेंसी की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। अफ्खा का उद्देश्य अफ्रीका की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र और भरोसेमंद आकलन करना है। इसके तहत महाद्वीप की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों को अधिक ध्यान में रखा जाएगा। लॉन्चिंग समारोह के दौरान अफ्खा की पहली संचालन टीम का भी परिचय दिया गया। 156 नर्सिंग अफसरों को आज MGI में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि बहुत जल्द हमारे अस्पतालों में 200 नर्सों की भर्ती की जाएगी। करुणा लालू को सुनते हैं।
3: आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार इन 156 नए नर्सों को था। स्कूल ऑफ नर्सिंग में वर्षों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब उन्हें नर्सिंग में राष्ट्रीय डिप्लोमा प्राप्त है। अब ज्यादा कुशलता प्राप्त हुई। सेंट्रल स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रशिक्षण की बदौलत ये मरीजों के लिए भी बेहतर होगा। कठिन था लेकिन सफल रहे। अपने साथियों और ट्यूटर के साथ सब ठीक से चला और रोड्रिक्स लौट कर काम करूंगी, अपनी बेहतरीन सेवा दूंगी। मिडवाइफ हूँ, अब जनरल नर्सिंग करूंगी, मरीजों को बेहतर सेवा दूंगी।

0: एक भाई और बहन के लिए नर्स बनना एक पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा भी है। ये पेशा बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत साहस और धैर्य चाहिए, मानवता और दूसरों की मदद की भावना भी। मैं बहुत केयरिंग हूँ, लोगों की सेवा करना बहुत पसंद करती हूँ, ह्यूमन टच भी है जिसकी जरूरत इस पेशे में है। मेरा एक बेटा फ्रांस में एक बड़ा नर्स है, मेरी बहनें इंग्लैंड में नर्स हैं, पूरा परिवार इस पेशे में लगा हुआ है। ये प्रशिक्षण तकनीकी कौशल विकसित करने से परे नर्सिंग को और अधिक पेशेवर बनाने में भी योगदान देता है। 3 साल पहले प्रवेश पाया, बहुत कम स्टाफ के साथ काम पूरा किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचु ने मरीजों की देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ये हमारी प्रणाली को बेहतर करने में मदद करेगी। ये शुरुआत है, पीएससी के जरिए 200 नर्सों की भर्ती की जाएगी, जिनमें 60 वरिष्ठ नर्सिंग अफसर भी हैं, जिनका 10 साल के अनुभव है, जो विदेश से हैं, कमी के कारण डिप्लोमा होल्डर को भी ले रहे हैं। अपने डिप्लोमा और जानकारी तथा उससे भी बढ़कर मानवीय संवेदनाएं मरीजों की सेवा में समर्पित होंगी।
1: हर दिन फेसबुक पर प्रकाशित करीब 20 पोस्ट को लेकर शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचती हैं, लेकिन इन शिकायतों पर कार्रवाई के नतीजे अक्सर सामने आने में समय लगता है। आपत्तिजनक और समस्याग्रस्त सामग्री की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने मीटा के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य सत्र आयोजित किया। इस बैठक में मॉरिशस में कंटेंट मॉडरेशन की कमियों को सामने रखा गया और इस समस्या के समाधान के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की गई। नेशनल क्राइम एजेंसी इंटरिम बिल को लेकर डीपीपी द्वारा आयोजित एक चर्चा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस चर्चा में अगले महानिदेशक के अधिकार और उनकी पहचान, नागरिकों की निगरानी को लेकर आशंकाएं तथा पुराने और अनसुलझे मामलों यानी कोल्ड केसेस को दोबारा खोलने जैसे मुद्दे शामिल रहे। एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने आज सेंट्रस्ट बिल्डिंग पोर्ट लुइस में एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने मुख्य रूप से देश में पानी की स्थिति और स्टेट ऑफ इकोनॉमी नामक दस्तावेज पर बात की, जिसे 2024 में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने पेश किया था। प्रवीण जगनाथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुपुर्द एक रिपोर्ट में स्टेट ऑफ इकोनॉमी में दिए गए आंकड़ों से असहमति जताई गई है। करुणा लालू को सुनते हैं।
0: एमएसएम के लीडर प्रवीण जगनाथ ने 2025 में सरकार को सौंपी गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया। उनके अनुसार स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दस्तावेज में आंकड़ों में कुछ विसंगतियां थीं।
2: पूर लाने 2020 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन रेगेट नू जीडीपी अ ला बेस सा नू गवर्नमेंट सा इन बेसली आ 570.3 मिलियन रुपी। Le vrai chiffre qui a IMF India, c'est 623.1 milliards de roupies. Nous guettons 2023, c'était là. State of the economy, Jiaou, 641.3 milliards de roupies, GDP. Et vrai chiffre, c'est 695.2 milliards de roupies. À ça, nous vînons 2024 et GDP, selon State of the Economy, 698.5 milliards roupies. IMF rappelle sa gouvernement-là à l'aune, dire qu'il vrai chiffre, c'est 756.7 milliards de roupies. Un trou qui existe, d'après IMF, en 2022 à 2024, il totalise 164.9 मिलियन रुपी।
0: प्रवीण जगनाथ ने देश में पानी आपूर्ति की कठिनाइयों पर भी बात की। उनके अनुसार मौसम संबंधी पूर्वानुमानों और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की चेतावनियों को देखते हुए सरकार को इस स्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने ईंधन की कीमतों में वृद्धि तथा रिटायरमेंट पेंशन, सामाजिक भत्तों और पे रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट के संबंध में भी अपनी चिंताएं व्यक्त की।

0: जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नाना पाटेकर जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व और अनोखा प्रभाव बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलता है। नाना पाटेकर का हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। विधिमासी बुरन को सुनते हैं।
1: बम्बई आए वाले का पहला कदम नहीं पड़ा। अरे अपना जिंदगी के वास्ते सबका जिंदगी बिगाड़ देगी क्या?
2: हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकारों में शुमार नाना पाटेकर आज हिंदी सिनेमा से विदा ले रही है। अपने कई दशकों लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग में एक अमित छाप छोड़ गई है। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और अब तक 56 जैसी फिल्मों में नाना पाटेकर ने अपने गंभीर और प्रभावशाली अभिनय से अलग पहचान बनाई। लेकिन उनका एक दूसरा अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया। 2007 की फिल्म वेलकम में उनके किरदार उदय शेट्टी ने उन्हें एक अलग ही अंदाज में लोकप्रिय बनाया।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय,
2: कंट्रोल उदय कंट्रोल, और कंट्रोल मजनू कंट्रोल जैसे संवाद आज भी मीम और सोशल मीडिया रील्स में सुनाई देते हैं। नाना पाटेकर सिर्फ अभिनेता नहीं थे, उन्होंने रंगमंच, मराठी सिनेमा और फिल्म निर्देशन में भी अपनी पहचान बनाई। गमन से शुरू हुआ उनका सफर कई यादगार फिल्मों तक पहुंचा। गंभीर भूमिकाएं हो या कॉमेडी, नाना पाटेकर ने हर किरदार को अपनी अलग आवाज और अंदाज दिया।
4: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
2: कभी वे वजूद फिल्म में कविता सुनाते हुए अपने लफ्जों से हर सीन को जीवित कर लेते, तो कभी खामोशी से बिना शब्द के जज्बातों को दिल में उतार देते। आज उनके निधन के साथ हिंदी सिनेमा ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिसकी आवाज, संवाद, अदायगी और किरदार लंबे समय तक दर्शकों की यादों में बने रहेंगे।
0: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां करुणा लालू के साथ।
5: हमारे इलाके पर हल्की सी कुछ तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि रात के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। कल सुबह भी और ऊंचाइयों पर जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दोपहर में कुछ घरे के लिए बादल घेर आएंगे, खासकर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं सेंट्रल प्लाटू पर, और जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश होगी। अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। रात के दौरान दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। सूर्यास्त 6:09 पर, कल सूर्योदय 5:44 पर।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: अपना लेन शामुनी में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड के श्री मौदे कातों, जो वासन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुपहर बाद के 3 बजे उनके घर अपना लेन शामुनी से उठाकर कोंगोपाल शामुनी

स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 3 PM। सेट क्वाजे थोड़े दूस में 52 साल के 52-year-old के श्री विनोद अंगुचा, जो सुंदर से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके भाई आत्मानंद अंगुचा के घर सेट क्वाजे थोड़े दूस से उठाकर बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11:30 AM। सीते बालिसों रोजबेल में 76 साल की 76-year-old की श्रीमती बसंती देवी नितुरिया पैदाइश नाम दुखी और जो बसंती से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे राजेश नितुरिया के घर सीते बालिसों रोजबेल से उठाकर माकिशानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। काली लेन बॉम्बू में 77 साल के 77-year-old के श्री लक्ष्मी नारायण अलहोदर, जो देवदास से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुपहर बाद के 3:30 बजे उनके बेटे प्रवेश अलहोदर के घर काली लेन बॉम्बू से उठाकर मोताई सैंपिया बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 3:30 PM। ब्रेंच रोड होशनुआ में 85 साल के 85-year-old के श्री मनिक चंद जिंघई, जो मनिक से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे खिमराज जिंघरी के घर ब्रेंच रोड होशनुआ से उठाकर होशनुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM। स्कूल लेन लावेनिया सैंपिया में 82 साल के 82-year-old के श्री हरिदत्त रामबरन, जो गुरुजी से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी विमला रामबरन के घर स्कूल लेन लावेनिया सैंपिया से उठाकर सैकोस्ता सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: 819 kilo.
1: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त शाम के 6:25 हो गए हैं।

ये हौसला किस तरह से झुक गया है अभी तक हमें पता नहीं है। जब आंखों से आंसू टपकने लगे तब हमें ये पता चला कि हम अंदर से टूट गए हैं। नमस्कार और आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम अभी के साथ रात के 7 बजे तक का। आप कैसे हैं? सब ठीक है ना? ठीक नहीं है? अरे यार, अगर ठीक भी नहीं है तो अपने दिमाग में ये मान करके चलिए कि सब ठीक है। Do you remember that main sentence of Three Idiots? All is well, all is well. Despite the fact that, हालांकि वे लोग एक बहुत ही गंभीर समस्या में अटक गए हैं, फिर भी उनका ये जो sentence है, उनका ये जो वाक्य है, वो बहुत ही popular रहा और बहुत सारे लोगों ने उसको apply भी किया, implement भी किया और it works. All is well, all is well. जी दोस्तों, हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक। इसका मतलब ये है कि नई सोच कार्यक्रम रात के 7 बजे तक, फिर इसके बाद 7 से लेकर के 9 बजे तक मैं हाजिर हो जाऊँगा फिर से एक बार आप लोगों के लिए दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में। तो चलिए, यहाँ पर एक नई सोच लेकर के हम भी पहुँच गए हैं, लेकिन इस गीत के बाद कुछ पाने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए और उस डिज़ायर के साथ डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकेंगे। अगर आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी सिचुएशन में अटक गए हैं,

लेकिन अगर अंदर से आपने वो चीज पाने के लिए एक तीव्र इच्छा जाहिर की है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने जिम्मेदारी भी उठाने का बीड़ा लिया है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक इट, माय डियर दोस्तों।

चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, जिसे आम भाषा में उसको प्रॉब्लम भी कहते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं

एक मुश्किल कठिन स्थिति कोई भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन वहां पर आप अटक गए हैं। अटकने के बाद आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, मन एकदम अशांत हो जाता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस होने लगते हैं। इट्स ओके, इसी को हम कहते हैं ले डेफी, यानी कि चैलेंजेस। और उन चैलेंजेस को मतलब उसको लेकर के अगर आपका रोना धोना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली वो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन करके आपको पराजित करने के लिए उतर आते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर जो जितने सारे वर्ड्स मैंने अभी यूज़ किए हैं, मतलब प्रॉब्लम्स, कठिनाई, मुश्किल, समस्या, व्हाटएवर, ये जो चैलेंजेस जब सामने आते हैं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये है क्या, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी गहराई में जाने की पूरी कोशिश करना और अपने आप को तैयार करना, अपने आप को प्रिपेयर करना कि मैं इस चैलेंज का किस तरह से सामना करूं। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम डोंट रिएक्ट। अगर आप रिएक्ट करेंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम और ज्यादा मतलब बिगड़ता जाएगा, समस्या और ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो उस चैलेंज का को देखना, उसको भांपना और किस तरह से मैं उसका सामना कर सकूंगा या कर सकूंगी, इसके बारे में सोचना। इट मे हैपन कि वो चैलेंज अभी ही सामने आ गए हैं और आपको तुरंत यू नो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर अभी आप डिसीजन नहीं लेंगे तो लोग आपके लिए डिसीजन ले लिए जाएंगे। सो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन बाय योरसेल्फ, हाउ टू फेस द चैलेंज। वो चुनौतियां, वो सफर बहुत ही मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आंखों के जो आंसू हैं उसको पोंछ करके फिर से एक हल्की सी मुस्कान लेकर के आए और कहें कि ये सफ़र तो मुश्किल है, कठिन है, लेकिन मैं उदास नहीं होऊंगा, मैं आगे जाऊंगा बढ़ के, डट के, और वो भी चट्टान की तरह चीर करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, यही होगा मेरा आत्मविश्वास।

और ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे आज जिनका आज बुरा दिन हुआ, बॉस से बहुत पंगा हो गया, या फिर आप किसी असाइनमेंट को लेकर के परेशान हैं, एक प्रोजेक्ट फेल हो गया है। इट्स ओके यार, जिंदगी है, उदास मत होना, जस्ट चिल, ओके, हैव ए लवली स्माइल ऑन योर फेस।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

जी बिल्कुल, इस वक्त शाम की 6:55 हो गई हैं। इसी आखिरी गीत के साथ हमारे जो शो हैं नई सोच कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। फिर इसके बाद हम मिलेंगे रात के 7 से लेकर के 9 तक फॉर योर दिलों की आवाज़। एक और नई सोच मैं आप लोगों के खिदमत पेश करना चाहूँगा जो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई इंसान आपको गलत तरीके से जज करता है या फिर कोई भी कुछ अनाप शनाप बात करना शुरू करता है तो इसके लिए आपको रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिया करते हैं इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने कहा इसके लिए आप अपना वैलिडेशन दे रही हैं। नो नीड टू रिएक्ट, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ आप वहाँ से मुकर करके निकल जाना। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप उस समय उनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करेंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे या फिर उसकी वजह से आपका जो मूड है वो ख़राब हो जाएगा, तब आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा मेरे दोस्त। इट्स ओके, उन्होंने कहा, उनके हिसाब से आप ऐसे हैं, लेकिन आप अपने आप को खुद जानते हैं ना। देयर इज़ अ वर्ड जिसको हम कहते हैं सेल्फी। ये सेल्फी नहीं है जो आप मोबाइल फ़ोन से लेते हैं। सेल्फी का मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। लाइक अगर आप 30 साल के हैं या फिर 35 साल के हैं या फिर 40 साल के हैं, अरे भाई आप अपने आप को 40 साल तक जानते हैं। 40 मिनट वाला जो इंसान अभी अभी आपको पहचाना वो कुछ अनाप शनाप कह करके निकल जाएगा, और अगर आप और आप वैलिडेशन देंगे, अच्छी बात नहीं है ना। इसके बारे में सोचिए मेरे दोस्त। कड़ी मेहनत करते जाना तब जाके मिलेगी शाबाशियां। जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज़ का रकम। स्टे कनेक्टेड विद अभी फॉर योर रेडियो मनोरंजन।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

जी हाँ बिल्कुल जी हाँ, धड़क धड़क का दिस इज राहत फतेह अली खान फॉर यू। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम में। दिल से हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार और आदाब। वंस अगेन रात के 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे। एंड ऑफ कोर्स माय दोस्तों 402-80-70 पर फोन करने का सॉलिड आइडिया तो है आप लोगों के पास, लेकिन अगर फोन नहीं हो पा रहे हैं तो कोई गल नहीं मेरे दोस्त, 5250-6200 पर मैसेज भेज सकते हैं। मुझे पता है आप किसी चीज पर बिजी हैं या फिर छोटी छोटी चुपके चुपके आप हमारे शो को सुन रहे हैं, इट्स ओके फाइन। आजकल मौसम रोमांटिक होता जा रहा है, मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। आप लोगों का क्या आइडिया है, मैसेज भेज करके मुझे बताना 1-5250-6200। अगर आप काम से निकलकर घर की ओर जा रही है, ड्राइव कर रही है, सो कंट्रोल करके साथ साथ आप एक हल्की से मुस्कान के साथ आप एंजॉय कीजिए ये जो ड्राइव है। अगर आप अकेले हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप लोनली ड्राइविंग करते हैं ना और वो बैकग्राउंड म्यूजिक में हम आ जाते हैं तो अच्छा लगता है ना, क्या बात है। सट्टी बजाइए हल्की सी मुस्कान के साथ।

इस भागम भाग की जिंदगी में एक ठहराव लेने के लिए हम भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप हैं, हम हैं, आप ठीक है ना, आप अच्छे हैं, और अगर आप हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, जस्ट स्टे द वे यू आर। ज्यादा बनावटी, ज्यादा इधर उधर मत कर।

और इस वक्त हमारे साथ रीटा किसुंदेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो बहुत तैयारी में लगे हुए हैं, उनके बेटे व्योम का जन्मदिन है। बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेष उनके पापा जी दे रहे हैं, जिनका नाम है अजय भाई है अकेला। और जितने सारे किसुंदेल लोखन फैमिली हैं उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं।

ने ही लिया है, जिन जिन लोगों ने मुझे फोन करके बताया है कि अगला गीत उनके नाम हो जाए। बस हम आपको कहना चाहेंगे नाम लेने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और थी मेरा मोबाइल फोन कितने हैं वेट कर जी।

यहाँ पर अंजनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा उनके पति देव वेहान के नाम अगला गीत हो जाए। और पता है एक्चुअली आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर नाना पाटेकर, दिग्गज एक्टर हैं, उनका देहांत हो गया है, उनका निधन हो गया है 75 वर्ष की आयु में। एक्चुअली इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहूँगा क्योंकि पूरा दिन इसी विषय पर बहुत सारे ऑडियंस ने बात कर ली है। सो यस, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ नाना पाटेकर, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वे बात करते थे, और एक्चुअली वे एक ऐसे अदाकारा थे जो कैसे मैं कहूँगा, बॉलीवुड में जब उन्होंने अपनी एंट्री मारी थी, ही वॉज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश एक्टर ऑफ थिएटर। वो रंगमंच के एक्टर थे, नाटक के एक्टर थे, तब जा कर के वो यहाँ पर प्रवेश किए हैं। और जब थिएटर एक्टर बड़े पर्दे में आते हैं ना, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और नाना पाटेकर वॉज वन ऑफ दैम। और बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी भेजे हैं और एक गाने की फरमाइश की हैं इन्होंने, किसने, सो वी डू हैव दागन, श्वेता, रवीश, अप्रीशा, जितने सारे अपाडू फैमिली हैं खुशनुआ के, और ये गाना प्लीज़ मेरे सभी फैमिली मेंबर्स के लिए हो जाए, ठीक है ना, फ्रॉम द मूवी खामोशी। मैं उसको चलाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप निश्चिंत रहिए, आराम से हम ये गाना आपके चलाएंगे। और जो अगला गीत है स्पेशली हम माधुरी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो मौका से हमें याद कर रही हैं उनके सभी दोस्तों के नाम। वी ऑल्सो हैव रेहाना फ्रॉम फिनिक्स, हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जालिला और जियाद के नाम, उन्होंने अगले गीत की फरमाइश की है।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर में ला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

बंधन अनजान हो सकता है, लेकिन ये बंधन बहुत ही मजबूत है। हो सकता है कि हम आपसे नहीं मिल पाए, या फिर आपने हमें न देखा है न जाना है। हमारी आवाज़ आपके दिलों तक पहुंचती है, यही बहुत बड़ी बात है, और हमारे गीत आप लोगों के जहन में पहुंचता है, यही बहुत बड़ी बात है। नमस्कार और आदाब, दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वक्त रात के 8:06 हो गए हैं और अभी आपका साथ देगा यहाँ पर रात के 9 तक का। और ऐसे टाइम पर अगर आप कोई भी फरमाइश करना चाहेंगे, सो डोंट हेजिटेट टू कॉल अस 402-80-70 पर, 4-02-8-07-0 पर, या फिर आप एक मैसेज भेज सकते हैं 1-5250-6200। वेटिंग फॉर यू। एंड ऑफकोर्स अगला गीत उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही बिजी हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो किचन में बिजी हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात की 8:12 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी यहाँ पर धराधर आते जा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि इतने सारे लोगों के मैसेजेस, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इनफैक्ट आप लोग मैसेजेस भेजते हैं या फिर मुझे सुनते हैं, ये अलग बात है मेरे दोस्त। चलिए, यहाँ पर रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ललिता के लिए अगला गीत हो जाए फ्रॉम कैलबास। एंड वी हैव अनिल सकिला जिनका आज बर्थडे है, बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम ललिता शिबू फैमिली। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, हम बहुत ही जल्द चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये गाना खासकर हम देरी

संकेत करना चाहेंगे वासु के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम थाईलैंड। और साथ ही साथ हर हर महादेव अभी, थैंक यू सो मच हर हर महादेव आपको भी। सो सत्यम शिवम सुंदरम का एक गाना अगर आप चला देंगे तो हमारा दिल भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। आप टेंशन मत लेना, उसको हम चलाएंगे बहुत ही जल्द। वी डू हैव नीला वाकवा से, उन्होंने नीला ने कहा अभी तक उसको कुछ नहीं मिला, मैंने कहा अगर मैं आपको दूंगा तो आपको मिल जाएगा। हशिश कशिश दोनिशा और चित्रकक्ष के नाम अगला गीत उन्होंने कहा चलाने के लिए, चलिए मैं आपको दे दूंगा। और अभी के लिए अरिजीत सिंह का एक बहुत ही सुंदर गाना आप लोगों के नाम, जिसकी फरमाइश के हैं विक्रांत, जिनका अभी से शुरू हो रहा है नाइट शिफा। बुकवास टू यू विक्रांत।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात के 8:27 हो गए हैं। ये गाना स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे भुवनेश्वर के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम शिमिग्रियन, और साथ ही साथ रेहाना भी जुड़ गई हैं फ्रॉम फिनिक्स। मोहतरमा, हम आपको कहना चाहेंगे आदाब। सो जियाद और जालिला के लिए उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

जी दोस्तों, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया और बहुत सारे मैसेजेस भी पढ़ने का मौका मिला। तो अगला गीत स्पेशली हम ज्योति के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, अश्नी, सुरेखा और रेखा और जितने सारे मैंडप फैमिली हैं उन लोगों के नाम। अगर जिंदगी में चाहत न होती तो कुछ भी नहीं होता। तब तक अभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार और आदाब, टेक केयर, बाय बाय, विल बी मीटिंग वेरी सून, लव यू एवरीवन।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात्रि के सुंदर बेला बा और तोहर सुनहरा साथ बा भोजपुरी प्रेमी लोगन और संगतिया लोग उषा के नमन स्वीकार करा जा भोजपुरी तर का तोहर बरिया प्रोग्राम तोहर खाते रोज चलेला और आज भी तोहर सेवा में हम आगे सा और हिया परी नंबर वा घुमावा कथों वह सैक और अपन मनपसंद गीत की फरमाइश करा जा और उषा तो हर संगे अभी से रात के 11 बजे लेता चला शुरू करी जा

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 9:17 हो गल बा श्रोता लोग त चला भोजपुरी तड़का तुहर खातिर रेडियो मॉरिशस और आर एम फ्री रेडियो पर रेडियो मनोरंजन चला अगला गीत सुनीता जी खातिर जो हमने के सुनाता रोजिल से गाना मांगा तवंजा अपन पति देव खातिर और बेटे कुश खातिर

रात के 9:30 बज गए बा प्यारे प्यारे साथी लोगन ई भोजपुरी तर का तोहर अपन प्रोग्राम है जकर से तोहर रात्रि एकदम मस्त हो जाला बहुत धमाकेदार शुरुआत होल जलसा के रात बा किदवा से दना एक तरफ जलसा गमत त दूसर का तरफ पूरा बॉलीवुड में सन्नाटा छा गए बा काहे कि आज भारतीय सिनेमा के एगो सच्चा सपूत श्री नाना पाटेकर जी के स्वर्गवास हो गल सब कोई तब बहुत दुखी हो गल बा ही दुखद समाचार से का करबा जे आयल बा तो ओकरा जाए के भी परेला दुनिया के पुराना रेत है तो चला अगला गीत रॉय खातिर जोन काम करेला विक्टोरिया हॉस्पिटल में गाना एकर खातिर और एकर सभी कोलीग्स खातिर

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का
1: नौ बजकर 41 मिनट हो गल बा श्रोता लोग टपिया नाना पाटेकर जी के बारे में बात होल। ऐसा कलाकार बार बार जन्म नए लेवलन जा है ना। नाना जी के भूमिका अंदाज डायलॉग बाजी हंसने के स्टाइल एक्शन करे के सबसे हट के बातें सभी फिल्म उनकर बहुत बढ़िया रहल। चाहे अग्नि साक्षिक हो या खामोशी वेलकम परिंदा एक से बढ़कर एक मूवी। चला आगे बढ़े और यहाँ पर ही हमने के सुनता अनीता जी जी हाँ काठोबोन से गाना मांगा था वंजा अपन बेटा अक्षय खातिर और बहू रीना खातिर और सभी रामलोगन परिवार।

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:53 हो गल बा ई अक्टूबर महीना त बहुत विशेष बाती रविवार से दुर्गा पूजा आरंभ होता और ई महीना में त बॉलीवुड कलाकार लोगन के जन्मदिन भी मनावल जाला जैसे अमिताभ बच्चन जी रेखा जी सनी देओल जी और रवीना टंडन हेमा मालिनी कुमार सानू और अभिजीत त चलो अगला गीत कृषि के गावल गीत खासकर अमृता जी खातिर जोन रहीला क्यों पिप गाना मांगत वन जा अपन खातिर और हमारे तमाम सुनने वाली खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:06 हो गए बा संगतिया लोग हमने के देश में जहां भोजपुरी कलाकार लोगन के ढेर मान बाते वही पर बॉलीवुड के गायक लोगन की भी बहुत प्रतिष्ठा बा 13 अक्टूबर के किशोरदा के पुण्यतिथि बाते चला उनका तो कबू नहीं सकब भूला सा उनकर याद में एगो छोटा सुन टुकड़ा गावत है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम जी हाँ छोटा लोग सब गीतवन किशोरदा की तो जबरदस्त है तो चला अगला गीत सुना जा गीता गजाधर के कावल गीत

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का।

0: का
1: रात के 10:24 हो गए बा श्रोता लोग आजकल सभी के होंठ पर भोजपुरी गीतवन के मार भा जहां देखबत भोजपुरी गाना की बमबारी होता ये भाषा के और ही आगे बढ़ाए के जिम्मा हमनी सबके है चला तो हर सहयोग से ही तई संभव है अगला गीत सुदेश भोजो के गावल गीत बरका बरका मामा चला बरका मामा और गाना खास कर सुदेवी जी खातिर जन रहीला सुया कौरी बखत हमने के सुनाता और गाना मांगा तो वंजा अपन खातिर पति राजन खातिर और बेटी आयुषी खातिर

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 10 बजकर 40 मिनट हो गए बा श्रोता लोगन अभी हमने एको कठिन दौर से गुजरा था ही था वर्षा के कमी बा सबसे बड़ा हिजेवा जोन हम माहो वाकवा हो जा पानी के स्तर गति जाता चला सब कोई मिलजुल के ईश्वर से प्रार्थना करी ला के ताकि बहुत वर्षा होए आगे कर जमाना में बहुत पूजा पाठ होत रहल पानी बरसात खातिर हर परोरी एगो ऐसन पूजा है जेकर करला से बारिश होत रहल तो चला अगला गीत सुना जा सोना नोयन के गावल गीत और ये गाना नसीम खातिर जो हमने के सुना था बुहिज व्यजिया से और गाना मांगा तवंजा अपन बहन खतीजा खातिर

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का

संगतिया लोगन आशा बात है कि हमने के कार्यक्रम तोहरा पसंद पड़ल और ऐसे ही साथ देते रहिया तो हर सेवा करे के मौका मिलल हमके सेवा कर ली त मेवा हमके मिली। हाँ मेवा के मतलब तो लोग सब के प्यार हमने के प्राप्त होला। चला आज्ञा चाहत हैं। नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, मैं हूं नमनी और आप कनेक्टेड है सुनहरे फल में। रात गहरी हो चुकी है, शहर की रौनक धीरे धीरे थम रही है, लेकिन कुछ कहानियां अभी भी जाग रही है। और आज की रात हम लौटेंगे उन सुरों की दुनिया में, 60s, 70s, 80s, जब गीतों में सादगी थी, अल्फाजों में गहराई थी और धुनों में एक अलग ही जादू था। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: खवातीन और हजरात, आज की शाम इस महफिल में आपके पसंदीदा कव्वाल जनाब चुलबुले असरानी साहब को बुलाया गया था, मगर अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो चुलबुले गुलगुले होकर बुलबुले हो चुके हैं और इसलिए यहां नहीं आ सके। उनके ना आने की मैं जनाब कर्नल टिप्सी से माफी चाहता हूं, इस गुजारिश के साथ कि उनकी ये हसीन महफिल साज और आवाज के जादू से महरूम नहीं रहेगी। अगर मेरे सीने में दिल है और उस दिल में तड़प, तो उसका असर लाजमी है। अपनी आवाज से सब दिलों को जीतने का वादा तो नहीं कर सकता, मगर हुजूर, ये नाचीज अगर एक रात में एक दिल भी जीत सका तो मेरी किस्मत चमक उठेगी।

कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और पुराने गीतों की तो बात ही कुछ और है। एक धुन चलती है और अचानक कोई चेहरा, कोई जगह, कोई पुराना लम्हा याद आ जाता है। तो चलिए उन्हीं गलियों में आपको ले चलते हैं।

जरा सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी के किसी एक खूबसूरत पल में वापस जाने का मौका मिले तो कौन सा गाना उस पल के साथ चलेगा? शायद आपका जवाब इसी अगले गीत में छुपा हो। जाने के लिए साथ देते रहिए आपके सुनहरे पल में।

मोहब्बत के जमाने बदल गए, अंदाज बदल गए, लेकिन मोहब्बत के एहसास को बयां करने वाले कुछ गीत आज भी उतने ही खूबसूरत ही है। चलिए एक ऐसे ही गीत के साथ रात को थोड़ा और हसीन बना।

60s के गीतों में एक अलग ही मिठास थी, साफ अल्फाज, कोमल धुने और आवाज में वो ठहराव। अब चलिए उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 70s के दौर में, जहां रोमांस भी था, मस्ती भी थी और जिंदगी के रंग भी।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हर किसी के पास एक पुराना गीत होता है जो सुनते ही दिल के किसी कोने का दरवाजा खोल देता है। आज रात अगर कोई ऐसा गीत आपको मिल गया हो तो समझिए हमारी महफिल सफल हुई। मैं हूं नर्मनी और आप सुन रहे हैं वो संगीत जो वक्त के साथ पुराना नहीं बल्कि और हसीन हो जाता है। तो इसी के साथ आपको विश करते हैं शुभ रात्रि।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेयर।

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: NBC Radio, 24 hours a day.